नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दी रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 ते आषाढ़ महीने दी 20 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जुलाई महीने दी 11 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

Dina. सात बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और सात बज की दो मिनट ते जानकारी दे नाल भरपूर प्रोग्राम होएगा गुड मॉर्निंग जलंधर और सात बज के तीन मिनट ते विंबलडन साइनस टेनिस चैंपियनशिप 2026 की हाईलाइट से नाल जोड़ांगे और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर इसी तरह जारी रहेगा। आठ बज के तीन मिनट ते प्रादेशिक चैनल तो तुसी सुनोगे पंजाबी दे विच खबरां। आठ बज के 40 मिनट ते अड्डी टप्पा दा सिलसिला होएगा जिस दे विच पंजाबी बैक टू बैक संगीता आनंद मान सकोगे। नौ बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और नौ बज के दो मिनट ते थोड़ा मन पसंदीदा प्रोग्राम होएगा दिल अपना पंजाबी जिस दे विच व्हाट्सएप के जरिए तुसी अपने ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट मैसेजेस 9855101027 कर सकोगे। दस बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और दस बज के दो मिनट ते हिंदी गीत संगीत की दयाल बहारा का सफर होएगा गीत बहार। ग्यारह बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और ग्यारह बज के दो मिनट ते सुनोगे पंजाबी तड़का जिस विच फोन इन प्रोग्राम के जरिए तुहारिया फरमाइशा पूरिया कीतिया जानगियां और 11 बज के 3 मिनट ते प्रसारण होएगा दिल्ली केंद्र तो जिसे तुसी सुनोगे स्टंप्ड। बारह बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 12 बज के 2 मिनट का सिलसिला होएगा प्रोग्राम होएगा होम स्वीट होम। एक बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज और 1:40 ते साढ़े प्रादेशिक चैनल तो तुसी सुनोगे पंजाबी दे विच खबरां और 1:50 ते प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज इसी तरह जारी रहेगा। शायराना महफिल होएगी प्रोग्राम होएगा दिल आज शायर है ठीक 2 बजे। तीन बजे का प्रसारण होएगा रेनबो दिल्ली तो तुसी सुनोगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। चार बजे का प्रसारण मुड़ FM बैंड 102.7 MHz से तुसी सुनोगे प्रोग्राम हेलो जलंधर। पांच बजे युवा वर्ग अपना प्रोग्राम सुनेगा युव वाणी। जिंदगी नु खूबसूरत बनाएगा सिलसिला होएगा लव यू जिंदगी शाम 6 बजे और 6:20 साढ़े प्रादेशिक चैनल तो प्रादेशिक खबर सुनोगे और 6:30 प्रोग्राम लव यू जिंदगी इसी तरह जारी रहेगा। 7 बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और फिल्मी दुनिया दी सैर कराएगा प्रोग्राम फिल्मी दुनिया 7:02 ते। 8 बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और आज दिन शनिवार है और आज का सिलसिला होएगा नेटवानी दा। 9 बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 9:02 ते प्रोग्राम होएगा दिल चाहता है। 10 बजे तुसी सुनोगे शामी गजल और 10:03 ते प्रोग्राम होएगा एक प्यार का नगमा है। 6:30 होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा 6:05 हो रहे ने वेला हो रहा भगती रस दे नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना नूं सरवण करन दा। आओ प्रोग्राम वंदना नूं शुरुआत करने आ मूल मंत्र दे नाल।

परमात्मा दे नाम जप और सुमरन दे नाल ही उसनू पाया जा सकता है। परमात्मा नू पाउण दा सब तो आसान रस्ता है उसका नाम, उसका सुमरन ते उसका जप।

नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार, जिन नाम आधार।

FM band 102.7 MHz ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਦਨਾ। 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचन से निघा स्वागत किया गया। केंद्र सरकार ने उच्च अल्कोहल मात्रा वाली दवाइयों के नियमों को होर सख्त करने लिए कानून में सोध की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। सेहत और परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा करने लिए मिशन संचालन समूह की तीजी मीटिंग की प्रधानगी की। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर रूट से स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच न लागू करने 2006 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है। पंजाब के राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब

बिल्कुल जी, आज मौसम सच्ची मुच्ची विच थोड़ा बेईमान हो गया ना। हल्की जी बारिश की थी और नाल दे नाल ह्यूमिडिटी का जड़ा एक सिलसिला जड़ा है ना वो शुरू हो गया। तो फिर मैं क्या जी सानू पता ही नहीं लगा है ना। और ये पता किवें लगेगा कि जदों ये उदों पता लगेगा ना कि जदों असीं बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा कि गली थोड़ी जी गिली है और रोड के उत्ते हल्की हल्की बूंदाबांदी ने ना थोड़ा जहा माहौल जड़ा है ना इदा का बना दिता है कि हुमस हुमस जी फील हो रही है। चलो जी ये प्यारा जहा सिलसिला जोड़ा आ शुरू कर दें और प्रोग्राम जोड़ा आ गुड मॉर्निंग जलंधर लैके हाजिर है थोड़ी अपनी दोस्त नशा। और अज के उस सिलसिले के मेरे नाल जुड़ चुके हैं 103.6 मेगाहर्ट्ज और नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप के स्रोते भी जिन्होंने उन्हें ट्यून किया उन्होंने दस दिन आ कि नशा बिल्कुल थोड़े नाल है और तुम मेरे नाल रहना है जी गुड मॉर्निंग जलंधर के इस सिलसिले के। और मुलाकात भी होएगी, गल्लां भी होणगियां, बातें भी होणगियां, जानकारी भी होएगी और नाल दे नाल ना थोड़ा जहा समकौण भी कर लेंगे है ना। अज जो तो मैं आई ना तो अज का मौसम थोड़ा सच्ची मुची च बेईमान सीगा है ना। इस करके मैं क्या चलो दोस्तों के नाल भी इस गल जरूर शेयर कर लें जी। मानसून जिहड़ा है ना ऑन द वे आ और कभी मीह होएगा तो कभी बहुत ज़्यादा मीह होएगा।

गाते कदे थोड़ा जा मी पै के सूर्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सो ये सारिया चीज़ा ये सारिया गल्ला जड़िया आज के सिलसिले में रहनगियां, लेकिन तुसी मेरे नाल रहोगे तो असं इनफोटेनमेंट आए खजाना जिहड़ा मैं अपनी पिटारी दे विच भर के लैके आई हाँ ना वो थोड़े सारे दे नाल साझा करेंगी। बस दिल से दिल तक का स्ट्रोंग कनैक्शन जिहड़ा है ना मेरे नाल बनाए रखियो। दिल से दिल तक 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से लो फिर आज के सफर की शुरुआत करने इस खूबसूरत गीत के नाल।

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक आकाशवाणी दीक्षा 2.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी अपनी दोस्त नशा दे नाल और प्रोग्राम जुड़ाया है, चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम दे विच जे असीं गल्लां करिए तां ट्रैफिक रूल्स जिहड़े आ जरूर फॉलो करो, घर तों निकलण तों पहलां जिहड़ा आ अपना हैलमेट लैणा ना भुल्लो और नाल दे नाल रेनकोट भी जिहड़ा आ ना अजकल अपने टू व्हीलर दे विच जरूर कैरी करके रखो, क्योंकि किथे मींह पै जांदा है और इस रेनकोट दी जरूरत पै सकदी है। और इस मौसम दे विच अपनी कन्विंस जिहड़ी है जिथे भी तुसी खड़ी करदे हो ना उत्थे इस चीज़ दा जरूर ध्यान रखो कि इस इदां दी जगह ते उसनू ना खड़े करो जिथे कोई कीड़े मकौड़े जिहड़े आ आउण दा ज़्यादा डर होवे। सो इन्हां सोहणियां छोटियां गल्लां दा ध्यान जिहड़ा है तुसी जरूर रखना है। प्रोग्राम दे विच इदां दी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है मैं इस करके दे रही हाँ, याद करवा रही हाँ कि कुछ चीज़ां जिहड़ियां अपने नाल जरूर जरूर समेट के रखो। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी रेनबो दाई जलंधर केंद्र है। 7:03 हो रहे ने, वेला होन जा रहा है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 की हाईलाइट्स के नाल जुड़न का।

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स ते हुने तुसी सुन रहे सी विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 दी हाइलाइट्स।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल से दिल तक का कनेक्शन है और एक कनेक्शन वाकई विच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बीच आप गलबात का सिलसिला जो है कॉन्टीन्यू करने और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जलंधर और इस सिलसिले के बीच मेरे लाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी स्रोते और नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए भी बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं वो मेरे नाल जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग न्यू गुड करने वाला। हाँ जी गुड मॉर्निंग जलंधर, जिते हर सवेर होंगी है जानकारी प्रेरणा और मुस्कराहट दे नाल भरपूर। 11 जुलाई की गल करे सी, 11 जुलाई यानी कि अज असी विश्व जनसंख्या दिवस जिहड़ा आ ओह भी मनाने आ। जदों भी जनसंख्या की गल हुंदी है तां असी अक्सर कहने आ आबादी बहुत वध गई, आबादी बहुत वध गई, पर की कदी सोचा है कि असल चुनौतियां सिर्फ आबादी नहीं है सगो हर एक इंसान तक बराबर दे मौकियां नूं पहुंचाउण दी है। इस साल का संदेश है संतुलित भविख लई जनसंख्या स्रोत अते मनुखी अधिकार, भाव हर बच्चे नूं चंगी सिक्ख्या मिले, हर परिवार नूं सेहत सेवावां मिलन, हर घर तक साफ पानी पहुँचे अते हर व्यक्ति नूं इज्जत दे नाल जीण दा मौका मिले। सोचो जे असी अज ही पानी की एक एक बूंद की कदर करिए, बिजली फजूल खपत रोकीए, धियां की पढ़ाई तो पहल दईए ते वातावरण की संभाल करिए, असी आउण वालियां पीढ़ियां लई एक बेहतर दुनिया छड्ड सकने आ। याद रखो दोस्तों, वड्डी आबादी कमज़ोर नहीं बनती, वड्डी आबादी जिहड़ी हुंदी है वह कमज़ोर नहीं बनती जे वह पीढ़ी लिखी सेहतमंद अते हुनरमंद होवे। इसलिए लोड़ है जागरूकता दी, जिम्मेवारी दी अते मिलके आगे बढ़न दी। ते आओ अज इस विश्व जनसंख्या दिवस ते एक छोटा जा प्रण करिए कि स्रोत दी संभाल करांगे, सही जानकारी फैलावांगे, लिंग समानता नूं अपनावांगे अते एक जिम्मेवार नागरिक जिहड़े आ उह बन के दिखावांगे। क्योंकि दोस्तों भविख गिणती नाल नहीं सोच दे नाल बदलता है, इसलिए आज विश्व जनसंख्या दिवस के उत्ते यही कहना चाहवांगी कि अपनी जिन्नियां भी जिम्मेवारियां साडियां बनिया हुई ने उन्हों बाखूबी बहुत वधिया तरीके दे नाल निभाउणा साडा फर्ज बनता है। मुस्कुराते रहो, जागरूक रहो, दिल से दिल तक आकाशवाणी दी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: जी देखिए, सबसे सिंपल है कि आजकल जनरली हम लोग ज्यादातर लोग घर पे चाय और बाकी चीजें लेते हैं, तो
1: जी।
0: अगर आसपास इस बरसात में तुलसी भी ग्रो करती है बहुत ज्यादा हमारे आसपास सराउंडिंग में,
1: जी।
0: तो जहाँ पे ग्रो करती है तो वहां पे कुछ तुलसी के पत्ते लेके उसको हम चाय में डाल दें और उसको अब फ्लेवर भी आएगा, स्वाद भी आएगा, इम्यूनिटी बूस्टर भी बहुत बढ़िया है।
1: जी।
0: दूसरा है, अगर बढ़िया फ्रेश अदरक मिले, अदरक तो हम डालते ही हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी।
0: तीसरा है, एक मार्केट में फार्मुलेशन त्रिकटु आती है, बहुत अच्छी फार्मुलेशन है, तो अगर हम चाय बना रहे हैं कभी कभी इस्तेमाल करना चाहें तो एक चुटकी थोड़ा सा उसमें हम चाय में डाल सकते हैं, उसमें भी शुंठी पिपली मरीची है तो बढ़िया फ्लेवर भी आ जाएगा और अच्छा इम्यूनिटी इनहेंसर भी है।
1: जी, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास से हमारे किचन में ही बहुत सारा ऐसा सामान है
0: हाँ,
1: जिसे
0: किचन में
1: हम।
0: ही आपके बहुत सारी चीजें हैं।
1: जी सर, मानसून के इस मौसम में कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है?
0: देखिए, मानसून में अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से कहूँ तो सुपाच्य भोजन जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, हल्का खाना खाना चाहिए।
1: जी
0: दूसरा ध्यान रखना चाहिए कि खाना बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए।
1: और
0: जब
1: सर
0: भी खाएं तो ताजा खाना खाएं, क्योंकि यहाँ माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है,
1: जी
0: तो कुछ भी बनाएं मतलब ताजा बनाएं और हल्का खाना खाएं, ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, तो
1: और
0: जो भी है
1: जी
0: फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइट फूड जो भी है, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दाल सब्जी सब कुछ खा सकते, कोई रोक टोक नहीं, बट ताजा खाएं कोशिश करें।
1: जी सर, सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परहेज भी करना चाहिए कि इस मौसम में नहीं खानी चाहिए?
0: अब ऐसा तो नहीं खाने जैसा तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ चीजें नहीं खाएं, ये कह सकते हो कि हैवी खाना नहीं खाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि टाइमली खाना खाएं, मीन्स रात में ज्यादा लेट नाइट ना खाएं, हैवी खाना अवॉइड करें। मतलब अब जो हर एक का अपना चॉइस होता है तो लोग उसमें खाते ही हैं, लेकिन अवॉइड करें ज्यादा अच्छा है हैवी फूड्स।
1: जी सर, आप एक चीज़ और बताइए कि इस मौसम में पेट बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है और ऐसे में हमारा जैसे बरसात होती है तो चटपटा खाने को जैसे बहुत सारे लोगों का दिल कहता है, क्या इस मौसम में बाहर का खाना या स्ट्रीट फूड खाना सुरक्षित है? अगर नहीं है तो क्यों?
0: स्ट्रीट फूड खाना मानसून में सुरक्षित तो नहीं कहेंगे हम,
1: जी
0: क्योंकि देखिए मानसून में ह्यूमिड होता है और ये जो टेम्परेचर रेंज है अपना, इसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है,
1: जी
0: तो अगर आपको लगता है कहीं बहुत हाइजेनिक कंडीशन में कुछ चीज बना है, बहुत साफ सफाई है, तो आप ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, बट अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है।
1: जी, यानी कि घर का बना हुआ ताज़ा भोजन ही मानसून में हमारी
0: हाँ
1: सेहत को
0: बिल्कुल,
1: तंदुरुस्त बना के रख सकता है
0: हाँ
1: सर।
0: मतलब कि स्ट्रीट फूड में भी आप देख लीजिए, आपको अगर लगता है कि बहुत साफ सफाई मेंटेन की गई हो, बिल्कुल हाइजेनिक, तो ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, वो देखना पड़ेगा कितनी साफ सफाई मेंटेन की गई, ताजा है कि नहीं है।
1: सर, बारिश के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, अगर ह्यूमिड ज्यादा है वेदर, गर्मी ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे डिहाइड्रेशन, पसीना बहुत निकलता है, शरीर से पानी की मात्रा निकलती है,
1: जी।
0: तो अपने आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, कोई भी हो, मतलब कि अगर ह्यूमिड है बाहर है, पसीना बहुत निकल रहा है, तो पानी की मात्रा, पानी, ताजा पानी, साफ पानी पीते रहें और कोशिश करें कि जो पानी हो, अगर घर में आजकल जनरली फिल्टर लोग लगवाते हैं तो
1: जी।
0: मतलब फिल्टर्ड पानी ही पिए, और आजकल के सीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी वाली बीमारियों से ही होता है, दूसरा मच्छरों वाली बीमारियां हैं आजकल,
1: जी। सर
0: तो
1: मतलब कि जो
0: मच्छरों,
1: दूषित पानी होता है जिसे हम कह सकते हैं कि पानी जो गंदा हो जाता है या जिसको पीने लायक नहीं कह सकते, उसमें जो बैक्टीरियाज हैं उसके बढ़ने की सावधानी, जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जैसे अभी आपने पानी की बात की, जिनके पास
0: हाँ
1: फिल्टर
0: हाँ
1: नहीं है या फिर जो नहीं पीते फिल्टर का पानी, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए सर?
0: उसके लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप पानी को पहले बॉईल कर लें, फिर ठंडा कर लें,
1: ओके।
0: पानी
1: और
0: को बॉईल कर लें और ठंडा कर लें, उसको अच्छान लें,
1: जी, और सर उस
0: जिसके पास
1: पानी,
0: फिल्टर नहीं है, कोई भी साधन नहीं, तो उबला पानी गर्म करके ठंडा कर लें,
1: जी,
0: उबाल लें।
1: यानी कि उस पानी में फिर आपको वो पूरे पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे और साथ साथ में
0: हाँ
1: जो दूषित पानी
0: वैसे
1: है।
0: बरसात में सबसे बेहतर तरीका यही है कि गर्म पानी ही पिए, सबके लिए सेफ रहता है वो।
1: जी सर, आयुर्वेद के अनुसार कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं कि इस मौसम

0: सब में स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके, बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सके।
1: देखिए आयुर्वेद के हिसाब से तो मानसून में जैसे कि यही चीजें जो मैंने बताई हैं, अगर मैं समराइज करूंगा तो यही चीजें करूंगा कि
0: जी
1: स्किन से रिलेटेड जैसे कि प्रॉब्लम है, समस्या है, मतलब
0: हम्म,
1: समस्या नहीं है, अगर हम जैसे कि बाहर से बारिश से भीग के आए हैं
0: जी,
1: तो अपने आप को तुरंत हम नहा लें और कोशिश करें कि हल्का सा कुछ डिसइन्फेक्टेंट वगैरह डाल लें पानी में, का दो ड्रॉप जो डालना है।
0: हम्म,
1: जैसे गांव में तो सबसे अच्छा है कि नीम
0: की
1: आसपास
0: पत्ती,
1: अगर सराउंडिंग में है थोड़ा सा
0: हम्म,
1: बॉईल करके हम नीम का पानी मिला लें,
0: जी
1: सस्ती और बेस्ट रेमेडी है वो स्किन के लिए।
0: हम्म, फिर और कौन,
1: दूसरा है सुपाच्य भोजन, मीन्स कि इजिली डाइजेस्टेबल खाना खाएं।
0: हम्म,
1: तीसरा है कि कोशिश करें कि बाहर का खाना जो हैवी फूड है उसको खाने से बचें।
0: हम्म,
1: बाकी तो यही है कि जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ताजे खाने, यही सब खाएं।
0: जी सर, मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए इस मौसम में, क्योंकि ये बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं।
1: देखिए इसका तो सबसे सिंपल उपाय ये है कि सबसे पहले सावधानी तो यही है कि जो अपने आसपास के सराउंडिंग में डेंगू का, तो यही कि आप कूलर वगैरह का भी प्रॉपर चेक लगा के रखें,
0: जी
1: साफ पानी में भी ग्रो कर जाता है तो पानी इकट्ठा ना होने दें।
0: हम्म,
1: दूसरा, मच्छरों को से बचाव को मॉस्किटो नेट्स लगाएं घर पे, मच्छर को एंट्री ही ना होने दें अपने वॉल, जो भी आपके दरवाजे खिड़की में जालियां लगवाएं, या नहीं है तो जो भी प्रिकॉशंस कर सकते हैं करें।
0: जी
1: बाकी सवेरे शाम या जो भी है फुल स्लीव के कपड़े पहने,
0: हम्म,
1: तो उसका उपाय तो बचाव ही है,
0: जी
1: साफ सफाई और बचाव।
0: जी सर, अगर कोई बारिश में भीग जाता है और तुरंत उसको क्या करना चाहिए कि वो बीमार ना हो?
1: मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बारिश में भीग जाते, लोग भीगते हैं तो मतलब तो बस यही है कि थोड़ा सा अपने आप को टाइमली नहा धो के सुखा लें।
0: हम्म, यानी कि बारिश में इस भीगने का जो मज़ा हम ले रहे होते हैं उसमें
1: हाँ
0: बीमार ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा ना करें कि हम बारिश के पानी से ही बीमार हो जाएं, है ना सर?
1: हाँ मीन्स ऐसा देखिए बारिश में भीगते नहीं, उसका भी अपना कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लोग भीगते ही हैं, बस
0: जी
1: ये कि
0: जी
1: ओवर कोशिश नहीं होनी चाहिए।
0: जी सर,
1: तो
0: क्या इस मानसून के मौसम में, है ना, इस मानसून के दौरान योग, व्यायाम और अच्छी नींद सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है?
1: देखिए योग व्यायाम तो मानसून ही नहीं, वो सारे सीजन के लिए ही जरूरी है।
0: जी,
1: कोई भी सीजन हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो अगर आप रेगुलर अपने लिए 15 मिनट थोड़ा बहुत भी कुछ योगा आसन प्राणायाम के लिए दे रहे हैं तो वो लाइफ के लिए एक अच्छी चीज है।
0: जी, यानी कि थोड़ा सा
1: तो योग,
0: समय जो है योग के लिए निकालना ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ
1: हाँ
0: रह
1: बिल्कुल,
0: सकें।
1: मुझे लगता है कि हर आदमी 15 से 20 मिनट समय अपने लिए निकाल सकता है,
0: सर
1: वो
0: इस
1: तो हर
0: जी सर इस
1: सीजन
0: मौसम
1: के लिए
0: में,
1: बेनिफिट है।
0: जी सर इस मौसम में सबसे ज़्यादा अपसेट होता है पेट, जैसे आपने पहले भी बताया कि
1: जी जी
0: एक स्वस्थ भोजन अगर हम करते हैं तो हमारा पेट जो है वो अपसेट नहीं होगा, लेकिन किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके हम एक अपने इस पेट से संबंधी प्रॉब्लम से बचाव कर सकते हैं?
1: देखिए किचन में हमारे जो आपके ये जीरा है, अजवाइन है, ठीक है, धनिया है, ये बहुत अच्छे कार्बिनेटिव्स हैं,
0: जी
1: सौंफ है जैसे, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं,
0: जी
1: ठीक है। काला नमक है जैसे, तो कुछ लोग घर पे देसी इनसे पाचक भी बनाते हैं, वो भी बना के रख सकते हैं,
0: जी
1: मार्केट में भी आते हैं। तो जितने भी आपके ये मसाले हैं, जीरा है, काला जीरा, सौंफ, ये सब अच्छे कार्बिनेटिव हैं, अच्छे डाइजेशन में काम करते हैं सब।
0: जी सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स जो मानसून के मौसम का मज़ा लेना चाहते हैं और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ ऐसी 5 या 6 सुझाव, 3-4 ही बता दीजिए, कुछ ऐसे सुझाव बता दीजिए ताकि उनको लगे कि हम मानसून का मज़ा भी लें और बीमार ना हों।
1: बिल्कुल देखिए मानसून का मजा लेना चाहिए, बिल्कुल ये प्राकृतिक चीजें हैं,
0: जी
1: तो उसके साथ ये है कुछ चीज जैसे मैंने जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ तो उनसे ही सुझाव निकल के आएंगे।
0: जी
1: देखिए अगर हम कहीं बारिश में भीग जा रहे हैं, लगातार भीग जा रहे हैं, तो एक बचाव के हिसाब से आप अपने घर पे आके स्नान करें, नहाए और अपने आप को ड्राई कर लें
0: जी
1: मानसून का मजा लेने के बाद, ठीक है।
0: जी
1: दूसरा है कि कोशिश करें कि पानी में ध्यान दें, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें, कहीं भी
0: जी
1: बाहर जैसे जाते हैं हम कुछ भी, तो कोशिश करें पानी साफ होना चाहिए। तीसरा है खाने

0: खाने पीने का टाइमिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा डाइजेशन अग्नि थोड़ा लो हो जाती है, तो रात में खाना टाइमली खा ले, ज्यादा लेट ना खाए मतलब
1: जी।
0: और बाकी वही सारी चीजें हैं, अपने आपको अगर पसीना ज्यादा निकल रहा है, कहीं बाहर है, ह्यूमिड ज्यादा है, तो पानी लेते रहे प्रॉपर टाइम से
1: जी।
0: और स्किन अच्छी रखनी है तो थोड़ा सा, अगर मैंने कहीं अवेलेबिलिटी है, नीम बहुत हमारी लाभकारी होती है, नीम के पत्ती उबाल के उसका पानी मिला के नहाए तो बहुत अच्छा होगा
1: जी। सर आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आज हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर में शेयर की है। उम्मीद करती हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं इस समय आपको सुन रहे हैं, आपकी दी गई इस जानकारी को ज़रूर अमल में लाएंगे ताकि वो मानसून का मज़ा भी ले सकें और स्वस्थ भी रह सकें।
0: जी
1: सर, डॉक्टर सर प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।
1: बिल्कुल, इस वक्त सी साढ़े नाल डॉक्टर सौरभ जिन्हें ने मानसून के इस मौसम के उत्ते बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि असी अपने आप को किवें स्वस्थ रख सकते हैं। बारिश का असली मज़ा उदों ही है जो असी सेहत नू तंदुरुस्त बनाने के बारे, सेहत का ख्याल रखने के लिए नाल जुड़ते हैं। इस लिए उन्होंने दसिया है कि स्वस्थ भोजन करना बहुत जरूरी है, साफ पानी पीना जरूरी है, व्यक्तिगत जी एक स्वच्छता जी होंगी है वो उत्ते भी नज़र मारना जरूरी है। इसलिए इस चीज़ में नज़र अंदाज ना करो। इस ही ब्यूटीफुल मैसेज के नाल निशा थोड़े एक तो की कह रही है कि अगले सैगमेंट वाल चलते हैं और अगली गलबात करांगे। तुसी बने रहो इसी तरह मेरे नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़, 103.9 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर और न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और बारिश के मौसम का आनंद सुरक्षित तरीके से लिए। जी हाँ।

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक 102.7 FM रेनबो ते तुझी सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। और 8:18 हो गए ने और रेडी हो कम से सानू और कि थाना तुम कम से जाने वास्ते रेडी रहो। और जे नाल रेडी हो रहे तो फिर चाह दिया चुस्कियां भी ले रहे होंगे है ना। लो जी लो, नाल दे नाल गल्लां भी होनियां चाहीदियां ने। हाँ बिल्कुल, एक इहो जिहा सवाल जिस ते हर घर विच इक घरेलू डॉक्टर जिहड़ा है ना जरूर मिल जाए है ना, मिल जाता ना घरेलू डॉक्टर मिल जाता। कौन है तुहाडे घर दे विच घरेलू डॉक्टर? मम्मी पापा दादी माँ दादू पापा या फिर चाचू चाची? कौन है वो घरेलू डॉक्टर? दसो दसो दसो जरा। हाँ हाँ, सारे अपने आप से थोड़े थोड़े डॉक्टर बन ही जाते हैं है ना। किसी नूं सट लग जाए ना तो एक आवाज़ आती है, ओए बर्फ लिया दो, ओए बर्फ लिया दो, बर्फ बर्फ बर्फ। दूजे पासे कोई कहना ओ नारा नारा नारा गर्म पानी की बोतल रखो सब ठीक हो जूगा। हम बेचारा जिसे सट बजी हो सोचता होगा दर्द तो एक पासे, दो डॉक्टर सही कौन आ यही पछाण डर रह जाता। चलो अज इस कन्फ्यूजन ना हमेशा दे लिए आप दूर कर देने। जे हुणे हुणे सट लगी है, डिग गए हो, मोच आ गई है या सोज आ गई है तो याद रखो नवी सट बर्फ नाल यारी। हाँ जी, क्योंकि बर्फ सोज नू वधन तो रुकती है तो दर्द नू भी काफ़ी हद तक घट कर दिंदी है। यानी कि ताज़ी सट के उत्ते तुसी अगर बर्फ़ की वरतों करते हो तो वह बहुत अच्छी दोस्ती जिहड़ी है निभाउंदी है। बाकी जे कमर का पुराना दर्द होवे, मांसपेशियां दी जकड़न होवे, गठिया जा कोई पीरियड्स दी दर्द होवे ता फिर कहो पुराना दर्द है, गर्म सेक दे नाल ही सैट होएगा। जी हाँ, यानी कि नवी लगी हुई सट दे उत्ते तुसी आइस ठंडा ठंडा कूल कूल वाला चीज़ लगाना है। और अगर थानू कोई कमर दर्द है, मांसपेशियों दे विच कोई जकड़न है, पीरियड्स दे दौरान कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर कहो पुराना दर्द गर्म सेक दे नाल सेट हो जूगा। गर्माहट नाल खून का संचार वधदा है ते मांसपेशियां रिलैक्स होंदियां ने ते शरीर नूं आराम मिलता है। चलो एक छोटा जिहा फॉर्मूला याद कर लो, नवी सट ते सोज ते बर्फ, पुराने दर्द ते जकड़न ते गर्म सेक। पर हाँ जी हाँ जी, जे दर्द बहुत ज़्यादा होवे ना, सोच लगातार वधदी जा रही होवे ना, तो हड्डी टुटन का शक होवे ना, तो गूगल वाले डॉक्टर कोल नहीं जाना, असली डॉक्टर दे कोल जरूर जाना है। सो असी हेल्थ टिप नहीं है कि इस तू अपने परिवार ते दोस्तों नाल भी साझा करो। कई बार सही समय ते सही सेक दवाई सही इलाज जिहड़ा आ वध कम कर जाता है। ते मैं तुहाडे नाल तुहाडी भी निशा डॉक्टर बनी हुई सी अच्छा ना है ना बनी हुई सी ना, यानी कि तुहाडे परिवार दे विच कोई ना कोई डॉक्टर हुंदा ते फिर मैं डॉक्टर बनी हुई सी ना इस वेले। मस्ती भी ते कम भी जानकारी, क्योंकि असी जोड़दे हां तुहानू सारिया नू दिल तो दिल तक 102.7 FM रेनबो दे उत्ते, तुसी अपनी दोस्त निशा दे नाल।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वख-वख प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मांग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

FM बैंड 102.7 MHz से होने तो सुन रहे प्रोग्राम अड्डी टप्पा। FM बैंड 102.7 MHz से आकाशवाणी रेनबो दाई जलंधर के अंदर है नौ बज रहे वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस का।

के कहे वेश बाजे तू फर्जन बोना, मैं भी तेरी सेवा उच्चे टैक्स एक लगाना। जे तू अपने ने बंदार है मुर्शद तई नवाना, अगदे बदले तैनू अखदा आना पऊ कढाउना, अगदे बदले तैनू अखदा आना पऊ कढाउना।

0: नमस्कार, मैं सुशील कुमार पिंड बाकरपुर रहना
1: जी। यार इनका मैसेज
0: साढ़े स्कूल वालों टाइम में कोई जादूगर तो आया था, पर एक मैडम जादूगरनी थी, वो ना मुक्का मार के दम बाहर निकाल देती थी।
1: मतलब एहसास अधूरे रह गए सी, जादूगर वाले वो भी पूरे कर देते हैं। और बहुत वधिया लगा, मुक्का मार के दंद कढ़ दिंदी सी इहो जी जादूगरनी जिहड़ी है ना, अजकल नहीं मिलती। अजकल जे इहो जी जादूगरनी मिल गई ना तो डंडा परेड हो जानी है। फिलहाल दे लई बहुत चंगा लगा तुहाडे मैसेजेस दे नाल, और अगला मैसेज सुन लैने आ जी।
2: मान योग निशा मैडम जी ते सारे ही स्रोते जिहड़े इस टाइम दिल अपना पंजाबी नाल प्रोग्राम एफ एम रेनबो के जरिए जुड़े हुए ने ते इस खूबसूरत प्रोग्राम का आनंद माण रहे ने
1: जी।
2: सारे नूं प्यार सत्कार नाल सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी।
2: सारे ही अपने विचार बहुत वधिया रख रहे ने
1: जी।
2: बहुत वधिया चुटकले विचार बहुत पसंद आउंदे ने ते मैडम निशा जी तुहाडा प्रोग्राम पेश करन दा अंदाज लाजवाब, तुहाडा ते दिलों धन्नवाद।
1: शुक्रिया।
2: सारे ही वधिया ते मैं लेंदे पंजाब दे श्रोतियां नूं बेनती करा कि वह भी इस प्रोग्राम की खूबसूरत शान बन। बहुत उतावले उन्हां दे विचार सुनने वास्ते, पर वो आ नहीं रहे पता नहीं क्यों। सो मैं एक छोटी जी गल कहन लगा।
1: जी जरूर।
2: अपने नाल गेमां ना खेडिया करो, जे गलती नाल जित भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे।
1: जी धन्यवाद, ठीक कह रहे हो।
2: सारे नूं प्यार सत्कार नाल सति श्री अकाल। मैं पिंड दे डाकां दा निमणा बाद नेड़े सविदो मंडी जिला जींदा रहणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा विद अरोड़ा फैमिली। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ओके जी।
1: लो जी, अरोड़ा फैमिली दी अटेंडेंस लग गई, हुण तुहाडी अटेंडेंस लगन दी वारी है। तुसीं कदों अटेंडेंस लगवानी है दसूंगी नहीं मैनूं। यस मैम। बिल्कुल जी, अज ते जादूगर दी क्लास लगी हुई है, यानी कि जादूगरियां जिहड़ियां है वो चल रही ने। तुहाडे मैसेजेस जिहड़े है प्रोग्राम च शामिल कर लैने आ। मैडम जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जो व्यक्ति बड़ों की सेवा करता है उसकी चार चीज बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसीलिए हमें आदर सम्मान सेवा करनी चाहिए। और ये मैसेज साडे कोल आया है मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल दीमान, श्रीमती कृष्णा दीमान और सारी दिमान फैमिली। सो जादूगरियां जिहड़ियां आ आकाशवाणी दीआं तुहाडे उत्ते इसे तरह छाईआं रहणियां चाहीदियां ने। इक छोटा जिहा गाना सुणदे आ और उस तों बाद तुहाडे मैसेजेस नूं कंटिन्यू करदे आ। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

0: कर रहे ने कस्तूरबा नगर जलंधर कैंट तो, और एनर्जी का तड़का जोड़ा है इसे तरह जारी रहेगा, कॉन्टीन्यू रहेगा थोड़े कले हुए मैसेजेस के नाल। मेरे नाल बने रहो दिल तो दिल तक अगला मैसेज जोड़ा प्रोग्राम जो फटाफट शामिल कर लेनी है।
1: मैडम जी प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों सुखदेव सिंह लखनपाल वालों। मैडम जी बहुत वधिया तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो, यादां पुरानियां जादूगरां दीआं स्कूल दीआं यादां क्या बात है मैडम जी, बहुत वधिया प्रोग्राम ते तुहाडा अंदाज बहुत प्यारा, परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला विच रखे। ते मैडम जी कुछ लाइना लेके हाजरा कबूल करियो
0: जी जरूर।
1: गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह
0: जी,
1: गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं मुसाफिरों की तरह, एक उम्र के बाद उस उम्र से एक उम्र के बाद उस उम्र की यादें रह जाती हैं, लेकिन वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती, लेकिन वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं,
0: अरे
1: जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। दिल अपना पंजाबी, धन्यवाद जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम च अपने मैसेज दे जरिए अपने एहसासां नूं सांझा करन दे लई। अगला मैसेज
2: नमस्कार आदाब जी, टीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी तो मोहम्मद अनवर अंसारी
0: जी। अंसारी जी
2: क्या बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा
0: जी।
2: उदय चंद्र जी रौनका ला के गए ने, दो लाइना जी करता जेकर सामने हो गए ता गल करिए, खोरे अरस ते बैठ के की करता ए दुनिया बना घमंड एडा, जिथे डुब के मरने नूं जी करदा, पर सानूं अजिहां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां, डुब के नहीं मरना चाहीदा, जिंदगी सान नाल जीउणी चाहीदी आ
0: ते
2: उहदा दाते दा शुकराना करके
0: जी।
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जी टीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी तो मोहम्मद अनवर अंसारी।
0: बिल्कुल जी अंसारी जी ने तो अपना प्यार जिहड़ा आ अपने शब्दों के जरिए जाहिर कर दिता, तुहाडा प्यार जिहड़ा आ वो प्रोग्राम जो मेरे को पहुंचा, देखती हाँ कहता कि आया, हले मेरे को पूरे के पूरे 9 मिनट है। दीपा करमगढ़ सत्रा तो बठिंडा पंजाब तो मैसेज कर रहे हैं, किसी दिया मजबूरियां ते कदे ना हसो, किसी दिया मजबूरियां ते कदे ना हसो, कोई मजबूरियां खरीद के नहीं ले आंदा, डरो वक्त दी मार तो बुरा वक्त किसी नूं दस के नहीं आंदा। बहुत ही डूंगी ते गहरी गल है, जरूर इस गल ते गौर फरमाना बनता है। जी अगला मैसेज शामिल करने हैं प्रोग्राम दे विच, दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम चल रहा है, थोड़े नाम बड़ी अपनी दोस्त निशा बिल्कुल बिल्कुल बरकरार है और तुसी मेरे नाल बरकरार रहो, इसे तरह प्रोग्राम च मैसेजेस करते रहो। और अगला मैसेज सुनिए जी,
3: प्यार भरी सत श्री अकाल तुहानू तुहाडी सारी टीम नू, दिल अपना पंजाबी मैं जी एस मुल्तानी
0: जी
3: गल समूल दी सुनावा जी। मैं तीसरी क्लास च पढ़दा सी
0: जी,
3: एक साडे टीचर सी अध्यापक, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਟੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਨੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਛਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਉੱਧਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम च मैसेज करने के लिए और थोड़े मैसेज ही ने प्रोग्राम नू खूबसूरत बना रहे हैं। और अगला मैसेज आप सुन लें जी,
4: प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी निशा बेटा जी
0: जी,
4: तुसानू ते तमाम एफएम सुनने वाले भैणा भरावां दोस्तां नू ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
4: ਸੁਣਨ ਚ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਛ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक-वक प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मांग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

फिल्म वो कौन थी तो लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ दे विच शोर कर तेरे प्यार में, साथी की बाहों में मरना भी क्या नसीब है, साथी की बाहों में मरना भी का नसीब है, यही तो मोहब्बत का इंतकाम है।

जिसने गाया है मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया है मदन मोहन, ते गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान दा। निगाहें जब किसी से दिल की बातें कहने लगे, खामोशियों भी प्यार के नगमे सुनाने लगे।

बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ हम कहें कुछ तुम कम कहो, क्योंकि FM रेनबो ते प्रोग्राम दिलाज शायरे लेके हाजिर हो गई हैं। मैं तुहाडी दोस्त ते होस्ट आर जे रिया। ते दिलाज शायर है, आपां कहते दिंदे हैं दिलाज शायर है, पर दिलाज शायर का मतलब की होया कि जिहड़ा दिल है ना अज शायरां वांग बन बैठा है। ते शायर कौन हुंदे ने? जिहड़े अपने दिल के जज्बात शब्दों के विच परो के अहसासां नूं बयां करदे ने। तो मैं लगता है कि शायरी तो सोना होर कुछ भी नहीं है अपने एहसासों को बयान करने के लिए। सो प्रोग्राम दिलाज शायर है लेके हाजिर हो गए हैं तुहाडे लिए। मैं तुहाडी दोस्त होस्ट आर जे रिया। तो इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी शामिल हो सकते हो, शिरकत कर सकते हो। किवें कर सकते हो मैं दस दिनी हाँ। साडा वट्सएप नंबर हैगा है जी 9855 10 10 23 9855 10 10 27। इस नंबर ते तुसी सानू टेक्स्ट मैसेज दे राही अपनी कोई भी लिखी हुई कविता शेर शायरी सांझी कर सकते हो। जेकर तुसी किसी होर दी लिखी हुई शेर और शायरी कविता साडे नाल सांझी कर रहे हो तो उन्हां दे लेखक दा नाम जरूर लिख दिओ। आगाज़ करदे हां इस महफिल दा इस गज़ल दे नाल।

मुझे भेजा था दुनिया देखने के लिए, मुझे भेजा था दुनिया देखने के लिए, लेकिन देखो मैं एक चेहरे का गुलाम बन के रह गया। प्रोग्राम तो सिंह

बस अपना ही मसला सुलझाया ना गया, बस अपना ही मसला सुलझाया ना गया, वरना यूं तो कितनों के काम आए थे हम। प्रोग्राम तो इंजॉय कर रहे हूँ दिल आज शायर अपनी दोस्त ते होस्ट आर जे रिया दे नाल। तो जड़ी महफिल है वो सजी हुई है, तो तुहाडे सारिआं नूं न्योता दे रही है, सानू सारिआं नूं आवाज़ दे रही है कि जिहड़े साडे लिसनर्स सानू सुन रहे ने, गज़लां सुन रहे ने, शेरो शायरियाँ सुन रहे ने, इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम, वह भी शामिल होण। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ? ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ 9855 10 10 27, 9855 10 10 27। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਜ਼ਮ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਮੁਝ ਪੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, कहते हो फिक्र है मेरी, सच बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये जिहड़ी कविता है सानू भेजी है मुहम्मद मुजफ्फर मुहम्मद अरमान, पिंड खुर्द जिला मलेरकोटला तो। गगनप्रीत कौर जो कि टांडा तो ने लिखते ने कि महफिलें छोड़ दी हमने ख्वाबों को पाने के लिए, अपने ही शौक सुला दिए जमाने को दिखाने के लिए, लोग जिसे कहते हैं सिर चढ़ी कामयाबी की सूरत, ना जाने कितने अरमान दफन है वहाँ जाने के लिए। तो बिल्कुल सच है जी, जदों कोई भी असीं किसी मुकाम ते पहुँच जाने हाँ, तो साढ़े आले दुआले वाले ना अक्सर सानू

कुछ काम है अपनी मर्जी के, कुछ काम है अपनी मर्ज़ी के, कुछ काम फ़कत मजबूरी है, फिर वक़्त बहुत ही थोड़ा है और सारे काम ज़रूरी हैं। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो, दिल आज शायर है अपनी दोस्त होस्ट आज ही रिया दे नाल। तो बिल्कुल सही क्या है किसी ने कि सारे काम ज़रूरी नहीं थे, वक्त तो बहुत ही थोड़ा है। तो जो वक्त है ना वो एक्चुअली बहुत ही थोड़ा होंदा है, जदों असी सोचते हैं कि कल कर लांगे, की कर लांगे, अपने दिल दे हालातां नूं बयान कर लांगे, पर वो कल ना कदे नहीं आंदी। सो अज ही मौका है, अज ही तुसी अपनी लिखिया हुई शेरों शायरियाँ कवितावां नज़मां साढ़े नाल सांझियां करो साढ़े व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हैगा है जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27। कहते हैं कि तुम्हारी बेचैनी बता रही है रियास, तुम्हारी बेचैनी बता रही है ब्यास, वो आ भी गए तो तुम हैरानी से मर जाओगे। अमन जो कि जलंधर तो नहीं लिखते हैं कि

मेरे हिस्से तू रहे बस, मेरे हिस्से तू रहे बस, बाकी दुनिया लोगों को मुबारक। मैं लगता है कि यह जोड़ा शेर है ना, यह जगजीत सिंह होर ने चित्रा सिंह होर जरूर किया होगा। जो हम इन्हों की लव स्टोरी दस दें तो इन्हों की लव स्टोरी ना बहुत ही प्यारी है, जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह की। एक किवें मिले, इन्हों की पहली मुलाकात किवें हुई, तो इन्हों का एक्चुअल विआह किदा होया, तुम्हें दस दी है कि चित्रा सिंह होर पहले ही विआह होया होया। तो ये मिले सी एक सिंगिंग मतलब कि एड शूट कर रहे थे, उसमें चित्रा सिंह ते जगजीत सिंह होनी मिले सके। तो चित्रा सिंह होर उस टाइम पर अपने हसबेंड के नाल कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो जगजीत सिंह होर पता सी कि जेडे चित्रा सिंह ने वो ऑलरेडी शादीशुदा ने, पर कहते ने ना कि जो प्यार हों ओना हों। तो मैं लगता है कि जिंदा जी जागती मिसाल है वो जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह का प्यार है। सो जगजीत सिंह होर ने की किया, उन्होंने पहली नज़र में ही चित्रा सिंह होर प्यार हो गया। तो फिर जगजीत सिंह उन चित्रा सिंह के जोड़े हसबेंड से उन्होंने को गए, तो उन्होंने को इजाजत ली कि मैं थोड़ी तो वाइफ के नाल विह करवा सकता हाँ। जो उन्होंने इजाजत मिल गई तो फिर उन्होंने चित्रा सिंह होर विह करवाया। विह तो बाद शादी तो बाद उन्होंने बहुत सारे जड़े है गज़ल बहुत सारे गीत गज़ल साडे लिए छड़ के गए ने। जगजीत सिंह होर देहांत तो बाद चित्रा सिंह ने बिल्कुल ही गाना बंद कर दिता सेगा। तो हुण साडे कोल जो बच गया है वह रह गई ने बहुत ही बा कमाल जिन्हों कहते हैं गज़ल उन्हां दी। सो एक जिहड़ी गज़ल है इन्हां दे गीत नूं इन्हां दे जिहड़ा प्यार है उन्हूं समर्पित करते हुए थोड़े लिए मैं पेश कर रही हाँ।

फिर से नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं, कब्र कितनी भी सजा लो कोई जिंदा नहीं होता। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो दिलाज शायर अपनी दोस्त ते होस्ट आर जे रिया दे नाल, ते तुसी इंजॉय ही कर रहे हो प्रोग्राम, पर नाल दे नाल तुसी ए सानू इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल जुड़ भी सकते हो, शामिल भी हो सकते हो, किवें शामिल हो सकते हो ये दस दिनी हाँ। साडा वट्सअप नंबर हैगा है जी 9855-10-10-28 9855-10-10-27। इस नंबर ते तुसी सानू वट्सअप मैसेज टैक्सट मैसेज करके अपनी लिखी हुई कोई भी कविता नज़म शेर व शायरी सांझी कर सकते हो। जिमें कि राम स्वरूप अरोड़ा जो कि सुल्तानपुर लोधी तो ने लिखते हैं कि जख्म एक जख्म ऐसे दिए उसने कि फिर कभी ना संभल पाए हम, खुद को समेटने की कोशिश में और बिखर गए हम, लोग ढूंढते रहे शहर भर में कातिल को हमारे, पर कोई ये जान ना पाया कि उनकी खामोशी से मर गए हम। एक और शेर है लिख देने कि मेरे लिए मेरा कामयाब होना मेरा जिंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन्होंने भी ये शेर लिखा है ना उन्होंने जेहड़े हौसले नूं सलाम है कि तुसी अपने जेहड़ा मुकाम है उन्नू तुसी इन्नी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो कि तुसी होर किसी चीज़ ली मतलब

0: आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर में, स्पेशल फोन इन प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। और आज रेडियो डॉक्टर स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जी हाँ श्रोताओं, आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 11 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने यह तय किया कि 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और बढ़ती आबादी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 1990 में पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, इस पर बातचीत की जाती है इस दिन। तो हम भी इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आप सभी में जागरूकता का एक अभियान लेकर चलेंगे। तो हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए उनसे मिलते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर ज्योत्सना सूरी।
3: नमस्कार एंड थैंक यू, आपने मुझे आज इस बहुत इम्पोर्टेंट डे पे इनवाइट किया। तो हम अपने श्रोताओं से आज बहुत सारी बातें करेंगे आज के स्पेशल डे के बारे में।
2: डॉक्टर सूरी, इस टॉपिक को कवर आप करेंगे और साथ ही श्रोताओं के जो हमारी क्वेरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके आंसर्स भी आपके पास तैयार ही रहेंगे। तो आप अपने सवाल तैयार रखिए। इस बीच हम एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का। तो चलिए पहले इस गाने का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद जो आज का सीरियस टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे।

0: हमने सुना बारिश जो बाहर बूंदा बांदी हो रही है या कहीं कहीं पर जोरों की बारिश भी हो रही है, हमने उसका मजा भी ले लिया इस गाने के माध्यम से। लेकिन अब आते हमारे टॉपिक पर, स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रेडियो डॉक्टर में है। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और मैं हूं सुजाता रथ। तो डॉक्टर, चीन के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। तो अगर मौजूदा हालात को देखते हुए कहें तो वर्तमान में भारत में पॉपुलेशन की क्या स्थिति है मैम?
1: हाँ सुजाता जी, हमारी 1952 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हमारा स्थापित हुआ था, एंड इट वाज़ द फर्स्ट जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत हेडवे किया है, बहुत हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। और आज हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन, वी स्टैंड एट अबाउट 1,040,000,000, मतलब ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग 1.5 billion। और रोज के बर्थ्स अगर देखे जाएं तो 65,000 से ऊपर पर डे बर्थ्स हो रहे हैं, और लगभग 1 से 2 बेबीज बॉर्न होते हैं एवरी 1 to 2 seconds एक बर्थ हमारे बेबी का हो रहा है। तो हमने काफी प्रोग्रेस की, जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत हाई था, जो हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं रेगुलरली हर 5 years में होते हैं। तो अभी हमारा ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज द एवरेज नंबर जो एक शादीशुदा महिला अपनी लाइफ टाइम में उनके कितने बच्चे होंगे एवरेज, तो वो आज की डेट में 2 है, जो अभी लेटेस्ट हमारा सर्वे था 2019-21 का NFHS 5, और उससे पहले हमारा 2.2 था, उससे पहले 2.4, 3.5, मतलब प्रोग्रेसिवली कम हो रहा है। तो आज हम 2 पे हैं, नेशनल एवरेज है ये, और ये जो 2 है ये एक रिप्लेसमेंट लेवल से अब नीचे हो गया है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। तो अगर हम इस पे रहें तो हमारी डेफिनेटली जनसंख्या जो है इंडिया की वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी, और आगे के जो हमारा टाइम आएगा उसमें वो धीरे धीरे कम भी हो सकती है, बट वो अभी इमीडिएट नहीं है, वो बहुत और डिकेड्स के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी। बट ये एक गुड न्यूज़ है कि हम अब 2 पे पहुंच गए हैं
0: जी। तो ये थोड़ा सा एक उत्साह बढ़ाने वाली न्यूज़ है। कुछ कॉलर्स मैम आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
2: नमस्ते सुजाता मैडम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। मेरा ये कहना है कि

0: पॉपुलेशन रोकने के लिए ना पहले काफी ज्यादा बड़े स्तर पर फैमिली प्लानिंग के उपाय बताए जाते थे, वो बीच में धीरे धीरे कम हो गए। और जैसे आज पॉपुलेशन डे है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे है, तो कोई प्रोग्राम चलाए जाएंगे, फिर बाद में लोग धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग के उपायों की जानकारी अधिक से अधिक दी जाए, और जो लोग इसमें नहीं मानते हैं उनके खिलाफ अगर दंडात्मक कार्रवाई हो सके तो की जाए, और जो अच्छी तरह मान लें तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
1: धन्यवाद, आपने हमारे साथ आप जुड़े आज इस प्रोग्राम में, और हम भी आपसे थोड़ा इस बात में तो सहमत है कि अवेयरनेस जरूर बढ़नी चाहिए, और हर ऐसा व्यक्ति जो फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहता है उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वो फैसिलिटीज लेने के लिए उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और उनको अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें उनका राइट है, एक रिप्रोडक्टिव राइट जो हम बोलते हैं, ये हर महिला और पुरुष का राइट है। बट दंडात्मक तरीके से हम शायद उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और क्योंकि परिवार नियोजन को अपनाना हम सबका एक हमारे फायदे के लिए है, तो इसमें अगर हम सबको एक ज्ञान दे, उनका फायदा होगा और उनकी प्रोग्रेस होगी, तो वो एक वॉलेंटरी वे में ही होना चाहिए और कभी भी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी राय है और हमारी कंट्री की भी शुरू से यही राय है कि फोर्सफुल हम इस चीज के लिए कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक महिला और पुरुष का राइट है कि उनको कितने बच्चे होने चाहिए और वो अपने बच्चों को कैसे पालें, तो ये उनका एक रिप्रोडक्टिव राइट होता है।
2: तो मैम आपने बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया। फिलहाल आपके पसंद का एक और गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ मैम, चलिए सुनते हैं।

0: और विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्सपर्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और मैं सुजाता रैद। व्हाट्सएप मैसेज है मोनू सेठ खलियापुर अमेठी से, लिखते हैं कि जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने भी और समाज में भी इस पर ध्यान दिलाया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जनसंख्या विस्फोट जो है क्यों नहीं रुक रहे।
1: तो हर चीज अपने समय लेती है। देखिए बहुत हेडवे हुआ, मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बताए तो हम काफी आगे आ गए हैं, बट ये है कि अभी ये यूनिफॉर्म नहीं है। जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमने कहा एवरेज 2 पे आ गया है पूरी कंट्री के लिए, बट उसमें ये देखा गया है कि जो शहरों में रह रहे हैं उसमें तो 1.5 तक भी आ गया है, बट रूरल एरियाज में अभी भी 2.5-3, कुछ कुछ स्टेट्स में 2.5 के ऊपर है। तो वहां पे हमें काम और करना है, जहां जहां पे हमें लगता है कि ये मैसेज नहीं पहुंच रहा या उनको किसी तरीके से ये फैसिलिटीज एक्सेसिबल नहीं है, तो उन जगहों पे हमें और आगे काम करना है। और आपको इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले सालों में जरूर दिखेगा। बहुत अच्छा काम चल रहा है और आई थिंक पिछले 2 डिकेड्स में काफी फर्क आया है।
0: हेलो
2: हेलो सुजाता जी को मेरा नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार,
2: डॉक्टर साहब को फादर प्रणाम।
1: हाँ नमस्कार जी,
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी रघुविंदर जी बोलिए।
2: डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है वो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश भी हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि पहले एक नारा था हम दो हमारे दो और अब है हम दो और दो, अब चार होने लगे हैं। सिर्फ लड़के की चाह में लड़कियां पैदा होती रहती है। ये पुराने ख्यालात कब तक चलेंगे और देश को इससे राहत कब मिलेगी, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें।
1: देखिए ये हर एक भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। एक इसमें डॉक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार नियोजन के अपनाओ उपाय और लिखो तरक्की के नए अध्याय। तो तरक्की और ये हम लिंक कर रहे हैं कि परिवार नियोजन जो करते हैं उनकी आगे जाके जरूर उनकी तरक्की भी होगी। और ये कहना कि पॉपुलेशन से हमारी कंट्री में कुछ नेगेटिव होगा, ये भी देखिए पॉपुलेशन है जनसंख्या और जनसंख्या हमारी ताकत है। हर कंट्री, जिस कंट्री में लोग नेगेटिव जनसंख्या हो रही है, नेगेटिव पॉपुलेशन है, वो भी परेशान है, जिधर ज्यादा पॉपुलेशन है वो भी परेशान है। तो वो बैलेंस एक लाना बहुत जरूरी है और हर कंट्री को अपने डेमो

0: साइंटिफिक्स के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनानी है. तो हमारी एक जो जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमें एजुकेट करना है, उसको जागरूक करना है, उसको अच्छी हेल्थ देनी है, शिक्षा देनी है, और वो आगे इसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे. और हर की जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि लड़का लड़की के बारे में, ये तो एक समाज का एक कर्तव्य है, आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का, ये सबको मिलके इसको चेंज करना है.
1: जी, तो जिस तरह का सवाल इन्होंने किया मैम, इस तरह की समझ अगर हमें सभी में होगी, लोगों में होगी,
0: हाँ जी,
1: तो एजुकेशन है, आपने कहा कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, कि लड़कियों की चाह में पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लड़कों की चाह में, तो ये सब नहीं होना चाहिए, देन दे विल बी अ बैलेंस.
0: यस,
1: तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता
0: है. की रोल है,
1: की रोल एजुकेशन का. तो बात करेंगे इस मौजू पर आगे भी, लेकिन फिलहाल आपके पसंद का एक और गाना मैं प्ले करने जा रही हूं मैम, चलिए सुनते हैं.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्सपर्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और मैं सुजाता रैत। दोस्तों आज 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल करने के उपायों पर इस दिन चर्चा की जाती है, लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दरअसल जनसंख्या बढ़ने के कारण देश और दुनिया को जो परेशानियां जैसे इकोसिस्टम और मानवता को जो नुकसान पहुंचा है उसके प्रति लोगों को इस दिन अलर्ट किया जाता है। इस दिन लोगों में परिवार नियोजन, गरीबी, समानता, नागरिक अधिकार, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाइयों के इस्तेमाल आदि जैसे कई समस्याओं पर बातचीत की जाती है और इन विषयों पर चर्चा की जाती है। तो ज्योत्सना मैम, अब बात करते हैं जनसंख्या कंट्रोल के उपायों पर।
2: हाँ जी, तो बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास और ये उपाय दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो इन उपायों में हमारे पास जो सबसे कॉमनली अवेलेबल और एक हम बोलते हैं बास्केट अप्रोच, क्योंकि जब भी कोई दाम्पत्य जो कपल है, जो जब वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए हमारे को अप्रोच करते हैं तो हम उनको पूरी चॉइसेस देते हैं, तभी उसको हम ऑल्सो वी कॉल इट कैफेटेरिया अप्रोच या बास्केट अप्रोच। तो एक बास्केट में जैसे कई तरह के आर्टिकल्स होते हैं उसी तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो उसमें हमारे पास जैसे मेल के लिए कॉन्डोम्स होते हैं और फीमेल के लिए हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोले जाते हैं, वो होते हैं। फिर हमारे पास IUCD जो होता है, जो यूट्रस के अंदर जो डिवाइस डाला जाता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी है, मल्टी लोड है, ये होते हैं। फिर इंजेक्टेबल ये हमारे कॉन्ट्रासेप्शन, ये हमारे लेटेस्ट हमारे जो बास्केट में आने वाले ये हैं, जो मुफ्त सारे सरकारी अस्पतालों में मिलते हैं। तो एक है हमारा जो अंतरा के नाम से, ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है जो हर 3 महीने में महिला को लगता है। इसके अलावा हमारे पास और भी तरह के पिल्स हैं जो नॉन हार्मोनल पिल्स हैं, वो भी एक नया हमारा जो आया छाया, सेंट क्रोमन पिल है, छाया के नाम से अवेलेबल है। और फिर ऑफ कोर्स जिनको आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ानी, और बिल्कुल एक तो होता है स्पेसिंग मेथड। तो स्पेसिंग मेथड का मतलब है कि आप अभी बच्चा नहीं चाहते, चाहे वो न्यूली मैरिड कपल हो या जिनका एक बच्चा है और वो आगे कुछ साल अभी और दूसरा बच्चा नहीं चाहते, तो वो मेथड होता है स्पेसिंग मेथड। और ये जो मैंने अभी आपको सारे उपाय बताए, ये सारे स्पेसिंग मेथड्स हैं। फिर एक है कि जिन्होंने आगे और जिनको बच्चे नहीं चाहिए, जिनके पास 2 बच्चे हैं और वो अब आगे बच्चे नहीं चाहते, तो वो हो जाता है जो हमारे लिमिट हो जाती है, अब फैमिली को हम लिमिट करना चाहते हैं, तो वो हमारे अलग तरह के मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो एक होता है हमारा ट्यूबेक्टमी, और उसको हम चाहे तो लैप्रोस्कोपिक हम स्टेरिलाइजेशन हम कर सकते हैं, और कभी कभी वो जैसे डिलीवरी के एकदम बाद होता है तो पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन महिला उसका प्रयोग कर सकती हैं, और पुरुषों के लिए NSV, तो वो एक बहुत आसान उपाय है पुरुषों के लिए, जो नॉन स्कैल्पल वेजेक्टमी बोला जाता है।

0: और वो महिलाओं का और पुरुषों का हम देखते हैं कि रेशो बहुत डिफरेंट है. मतलब जहाँ कि अगर पूरे हम अगर अपने स्टैटिस्टिक्स देखें तो जैसे 18-20% अगर महिलाओं ने कराया तो वो इवन 1% भी पुरुष ये ऑपरेशन आगे बढ़ के नहीं कराते. तो इसके बहुत सारे कारणवश है कि कुछ मिथ्स हैं और कुछ उनको एक फियर होता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इम्पोर्टेंस हो सकती है या कमजोरी हो सकती है. बट ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ये सब मिथ्स हैं. तभी तो हम बोल रहे हैं मिथ हैं, बल्कि ये बहुत उनके लिए एक बहुत इजी तरीके से उनका ऑपरेशन हो सकता है
1: जी. तो मैम आपने बहुत ही अच्छे से समझा कर बताया बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये कितनी सुगमता से दूर दराज के गांव में भी क्या अवेलेबल है, वहां पर भी जो महिलाएं हैं पुरुष हैं वो इसका फायदा इसका लाभ उठा पा रही हैं कि नहीं. लेकिन पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, इनकी बात सुन ले मैम.

0: एक फियर होता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इम्पोर्टेंस हो सकती है या कमजोरी हो सकती है, बट ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है. ये सब मिथ्स हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं मिथ हैं, बल्कि ये बहुत उनके लिए एक बहुत इजी तरीके से उनका ऑपरेशन हो सकता है.
1: जी, तो मैम आपने बहुत ही अच्छे से समझा कर बताया बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये कितनी सुगमता से दूर दराज के गांव में भी क्या अवेलेबल है, वहां पर भी जो महिलाएं हैं पुरुष हैं वो इसका फायदा, इसका लाभ उठा पा रही हैं कि नहीं. लेकिन पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, इनकी बात सुन ले मैम.
2: हेलो.
1: हाँ जी,
2: आदाब.
1: हाँ आदाब, बताइए.
2: मैं लहरपुर से आजाद अहमद आजाद लहरपुरी बोल रहा हूँ.
1: हाँ लहरपुरी साहब, बताइए क्या पूछना चाहते हैं
2: आप. पूछने की बात ये कि कुछ सवाल रह नहीं गए, इतना ज्यादा डॉक्टर साहबा ने बता दिया.
1: जी जी जी,
2: कि आप कुछ सवाल पूछने का नहीं रहा.
1: हाँ जी,
2: बस मैंने फोन मिला दिया, बात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं और वाकई डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से सभी को समझा कर कहा है और लोग सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. शुक्रिया आपका.
0: धन्यवाद धन्यवाद, आपने सुना हमारा मैसेज सुना और हम उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलते हैं.
2: आदाब आदाब
0: आदाब जी, आदाब.
1: तो मैम जैसा कि मैं जानना चाह रही थी कि जो बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसका लाभ क्या असल में हमारे जो ग्रामीण इलाकों में हैं, बहुत बीहड़ इलाकों में रहती हैं महिलाएं पुरुष परिवार दूर दराज है, वहां तक क्या ये पहुंच पा रहा है मैम?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सुजाता जी. तो अब पूरा हमारा प्रयास यही है कि ये हमारे हर महिला को, ये सारे और पुरुष को भी, महिला ही क्यों, हम दोनों को ये जागरूकता देना चाहते हैं और उनको ये फैसिलिटीज देना चाहते हैं कि उनको ये सब उपाय उनको उपयुक्त हो. तो आपको भी मालूम है हमारे हेल्थ सिस्टम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और फिर हमारे और भी आंगनवाड़ी भी हैं जहाँ पे ये जैसे कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूशन और पिल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होती है. आशा है, जो वर्कर्स हैं, जो आशा, ये घर घर जाकर जिनको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए उनको किट्स इस तरह की बांटी जाती हैं जिसमें कि पिल्स हैं और कॉन्डोम्स हैं. तो ये सब चीज़ें और एक अभी जैसे न्यू एक प्रोग्राम कई स्टेट्स में लागू हुआ है, नई पहल, इसमें किट्स हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए स्पेशली, वो भी आशा जाके उनके घरों में देते हैं जिसमें कि कॉन्डोम्स हैं और पूरी एक उसमें ब्रोशर होता है कलरफुल वे में कि क्या क्या तरीके हैं. और आप एकदम जैसे न्यूली मैरिड कपल हैं वो एकदम परिवार नहीं बढ़ाना चाहते, वो थोड़ा स्पेसिंग वो चाहते हैं कि हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जानें. कई लोग उस समय अपनी जॉब में प्रोग्रेस करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है और कुछ साल का वो गैप देना चाहते हैं. तो उनको ये सारी जो जो अवेलेबल हैं वो सब उनको ज्ञान इन्फॉर्मेशन दिया जाता है थ्रू दीज किट्स.
1: तो जो और हमारी आशा आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं वो इस तरह से ये संदेश उन तक पहुंचाती हैं कि उनमें एक विश्वास भी जगता है.
0: यस यस,
1: और एक ये सारे स्कीम के प्रति एक पॉजिटिविटी मन में आती.
0: बिल्कुल
1: है.
0: ये बहुत ही जरूरी है पॉजिटिविटी से काम करना और उसके ऊपर एक फेथ होना सिस्टम पे, वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज के सक्सेस के लिए.
1: तो समय है मैम एक म्यूजिकल ब्रेक.
0: हाँ जी जरूर, आपने सारे मेरी पसंद के गाने चला रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ.
1: ओके मैम.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और हमारे एक्सपर्ट हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, साथ में मैं सुजाता रथ। डॉक्टर सूरी एक कॉलर हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं शाहजहां उत्तराखंड देहरादून से बात कर रहा हूँ।
1: बात कीजिए डॉक्टर।
2: सबसे पहले तो डॉक्टर का शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम पसंद आ रहा है।
1: थैंक यू, धन्यवाद जी। हाँ बताइए, अपना सवाल बताइए।
2: और मैं जानना चाहता हूँ परिवार नियोजन का कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा सरकार ने जारी किया है।
1: परिवार नियोजन के लिए आप उत्तराखंड में रहते हैं?
2: यस मैम।
1: हाँ तो मैम, वहाँ के सरकारी अस्पताल में, जैसे कि मैम ने अभी बहुत ही विस्तार से बताया था कि सरकार की तरफ से पूरा एक स्कीम चलाई जा रही है, एक पूरा बास्केट इस

0: लिए दिया जाता है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो हर सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये जो सुविधा है ये मिल जाएगी।
1: जी मिल जाएंगी। आप अपने जो आपके नियरेस्ट सरकारी आपके अस्पताल हैं या आपके जो भी सेंटर हैं तो वहाँ पे आप जरूर गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर आप ये सुविधाएं ले सकते हैं जो फैमिली।
2: वो तो बात सही है मैम, मैं जानना चाहता हूँ कोई परिवार नियोजन का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ऐसा कोई टोल फ्री
1: नंबर तो ऐसा नहीं है, आपको विजिट करके लेना पड़ेगा जो भी आप सर्विसेज लेना चाहते हैं।
2: हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत जानकारी दी, धन्यवाद।
1: हाँ जी,
0: जो समय में एक व्हाट्सएप मैसेज है प्रोमिला का दिल्ली से, इन्होंने लिखा है कि इनका बच्चा अभी 4 महीने का है और अभी फिलहाल इसके बाद ये नहीं चाहती हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो किसी तरह के प्रेगनेंसी का डर तो नहीं है मैम?
1: हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं और पुरुष ये सोचते हैं कि जब उनका बच्चा छोटा है और दूध पीता है तो अभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर ऐसा देखा गया है कि इवन दो जब तक वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं माताएं अपने बच्चे शिशु को और उनका मासिक धर्म अभी वापस नहीं आया, तो वो एमिनोरिया बोलते हैं हम कि अभी उनको पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ और वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं और बच्चा अभी 6 महीने की आयु से कम है तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, बट ये कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं है। और बहुत सारी महिलाएं जो इसी पीरियड में कंसीव कर देती हैं और उनको ये ज्ञान भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो जब वो जब तक उनको ज्ञान होता है वो बच्चा 6 महीने का जब हिलने लगता है तो कई महिलाएं अस्पताल आती हैं कि हमने सोचा कि हम दूध पिला रहे हैं और इसीलिए पीरियड नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको और अभी बच्चा नहीं चाहिए तो आप कोई परिवार नियोजन का मेथड अपनाएं। तो इनमें पोस्टपार्टम पीरियड में जैसे हम बोलते हैं जो एक तो होता है कि जैसे आपका तो 4 महीने का बच्चा है और अभी आप उसको पूरी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे होंगे बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय हम आपको कुछ जो हमारे ये हैं जैसे कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हम आपको ब्रेस्ट फीडिंग के समय नहीं दे सकते, बट कॉपर टी आपको कभी भी लग सकती है, इंजेक्शंस जो 3 महीने वाले आपको लग सकते हैं, और एक और मैंने आपको बताया एक नया जो हमारा एक और है छाया, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी टैबलेट है जो हफ्ते में एक बार लेना होता है। तो ये आपको सारी चीज़ें आपको अपने जो भी नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल गवर्नमेंट का या सेंटर, तो आप ये सारी फैसिलिटीज़ ले सकती हैं और ज़रूर आप कोई ना कोई मेथड अपनाएं। और बाकी भी जो श्रोता सुन रहे हैं, जब डिलीवरी के लिए आप अस्पताल जाते हैं तो एक हमारा एक प्रोग्राम है PPIUCD जो पोस्टपार्टम पीरियड में इमीडिएटली डिलीवरी के बाद जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी होती है, अगर बाय चांस आपका सिजेरियन भी होता है तो वो साथ के साथ आपका कॉपर टी जो बहुत छोटी सी एक डिवाइस है बट वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देती है, बहुत कामयाब है वो, और उसमें ये नहीं कि आपको रोज़ याद करके खाना है जैसे गोली खानी है तो रोज़ आपको याद करना है, आप कभी कभी भूल भी सकते हैं, वो एक बार डल जाती है तो आप 10 साल के लिए निश्चिंत हैं, और अगर उससे जल्दी आपको बच्चा चाहिए आप कभी भी निकलवा सकते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि डिलीवरी के एकदम बाद अगर आप स्पेसिंग करना चाहते हैं तो आप ये कॉपर टी लगाएं, नहीं भी चाहते आगे बच्चा तो भी कॉपर टी लगा सकते हैं।
0: तो मैम जो मैम ने बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी दी, खास करके हमारी जो यंग माताएं हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हम लेंगे और मैम आज बहुत अच्छे अच्छे गाने चुन कर लाई हैं आप सभी के लिए, तो सुनते हैं जो मैम के पसंद का ये गाना।

और आज इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को समझाकर जानकारी दे रही हैं स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो मैम, आपकी एफर्ट्स के लिए बहुत सारी तारीफें आई हैं व्हाट्सएप के जरिए। कुछ एक

0: जरूर लेना चाहूंगी। सरोज बंसल अनूप कौर ने गुड़गांव से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। थैंक्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन।
1: थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अप्रिशिएटिंग
0: जी। और एक मैसेज है मैम, गुड्डू फ्रॉम दिल्ली से ही हैं। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र है 32 साल, दो बेटियां हैं, एक बेटा है। हम दोनों अब बच्चा नहीं चाहते मैम, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, इसके लिए क्या उपाय है?
1: हाँ गुड्डू जी, ये आपने जो सवाल पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका हम यही आंसर देंगे कि ऑपरेशन सिर्फ नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास। और आप गुड्डू जी ये महिला हैं?
0: नहीं पुरुष
1: हैं। पुरुष हैं। तो गुड्डू जी आप खुद भी परिवार नियोजन आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते ऑपरेशन जैसे आपने बोला, तो जो आपकी वाइफ हैं उनको आप कॉपर टी जैसे है, ये कॉपर टी भी एक तरह से हम इनको ना बोलते हैं लार्क मेथड, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, एक बार लगाइए और 10 साल के लिए आपको पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि कोई आपको प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। तो ये आप कॉपर टी का सेवन कर सकते हैं ऐसे में। और बाकी तरीके हैं जैसे कि मैंने आपको इंजेक्शंस बताए थे और गोलियां बताई थी। और एक और तरीका है जो कि वैसे अभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा, बट ये प्राइवेटली अवेलेबल है, जैसे हम इसको जो हमारे इम्प्लांट्स हैं, तो इम्प्लांट्स हैं जो कि एक रॉड होती है जो आपके जो महिला हैं उनके ये अपर आर्म में थोड़ा सा बस नीचे जाके इम्प्लांट कर दी जाती है और वो आपको 3 to 5 years तक, वो भी 5 years तक आपको निश्चिंत करती है आप प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल से आप ये वाला आप लगवा सकते हैं इम्प्लांट्स। और बाकी तो कॉपर टी मैं आपको राय दूंगी, वो एक तरह से बिना ऑपरेशन करे भी वो एक तरह से उसी का काम करेगी, क्योंकि बहुत लंबा उसका टाइम होता है उसका, और उसमें आपको बार बार किसी भी हॉस्पिटल में जाना नहीं है, एक बार हो गया और फिर आप निश्चिंत हैं।
0: मैम एक कॉलर है, हेलो।
2: गुड आफ्टरनून डॉक्टर।
0: हाँ
1: गुड आफ्टरनून।
2: मेरा फ्रॉम गोवा।
0: यस।
2: मेरे ख्याल से दो तरह का लोग होते हैं जो पॉपुलेशन के प्रमोशन करते हैं। एक तरह का एक कैटेगरी है जो इलिटरेट है, उनको पता नहीं है, गरीब है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है। और दूसरा है पढ़ा लिखा, हर मर्द को बेटा ही चाहिए, तो बेटियां बेटियां पैदा होता है, जब तक बेटा पैदा नहीं होता है वहां पे भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको एडुकेशन चाहिए, और जो बेटियां हैं ज्यादा उनके बीवियों को एडुकेशन चाहिए जो पॉपुलेशन ये कंट्रोल करने का, वो जो आप बताया इसी ओर।
1: हाँ जी, आपको हम बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपके बहुत अच्छे व्यूज हैं। और अगर हर हमारी कंट्री में हमारे सारी जो पॉपुलेशन इस तरीके से सोचेगी जैसे आपने बोला, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बेटा और बेटी दोनों ही इक्वल हैं और हमें उनको एक ही नजरिए से देखना चाहिए।
0: तो मैम चलते चलते एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, शायद आप भी डिस्कस कर रही थी मेरे साथ, कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हमेशा हम सभी का ध्यान महिलाओं की ओर जाता है कि महिलाएं रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके विपरीत पुरुषों का रोल शायद ज्यादा है महिलाओं से। तो कितने रिस्पॉन्सिबल है मैम पुरुष पॉपुलेशन को कम करने में? मैम
1: देखिए आपको भी पता है कि वो इक्वल के भागीदार हैं, है ना। तो मैं सिर्फ इसको ऐसे बोलूंगी, सुखी दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र सबने यही माना है, पुरुषों को भी बराबर की भागीदारी निभाना है, उसके बिना हम नहीं आगे प्रोग्रेस कर सकते। हर चीज महिला की जिम्मेवारी नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारी फैमिली प्लानिंग इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इट इज वेन यू वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, और उन बच्चों को हमें पढ़ाना लिखाना और वो इक्वल उनको राइट्स उनके, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। ये हमारा है एक मैसेज आज सबके लिए कि इसी से हमारा देश प्रोग्रेस करेगा और तरक्की

0: करके विश्व में सबसे अच्छा देश बनेगा, सबसे प्रोग्रेसिव देश बनेगा,
1: हमारी स्ट्रेंथ
0: बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इतने अच्छे से हमको समझाकर सभी को बताने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सुजाता जी फॉर कॉलिंग मी टुडे आफ्टरनून, एंड आई रियली थैंक यू एंड ऑल आर व्यूअर्स जिन्होंने इतने ध्यान से सुना, इतने सवाल पूछे और इतना अप्रिशिएट किया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर। म्यूजिक

0: ईज समझ गए हो ना?
1: हाँ जी हाँ जी,
0: क्या कहा? हाँ
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, इसे समझ गया कि ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज़ थे। ठीक है जी, ठीक है, तुसी होवोंगे बड़े काम दी, असी तुहानू क्यों ऐसा वैसा समझना है। साढ़े जिहड़े अगले कॉलर ने साडे नाल जुड़ गए ने, तो आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां आपां। हैलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी?
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो जी?
2: रविंदर कुमार कैंबो बोल रहे हैं मैडम, बोल रहा हूं जी।
1: रविंदर जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच, की हाल चाल ने?
2: हाल चाल बहुत बढ़िया जी।
1: की करी जाने हो?
2: बस दुकान पे बैठे थी, हूं ट्राई किया तो लग गया 2-4 मिनट से।
1: हाय हाय हाय, वाह जी वाह, आगे भी ट्राई कर दे न्यू फोन करना?
2: हां जी, जदो मतलब टाइम मिल जाए काम चो फिर कर लेगा, नहीं तो काम तो पहले नंबर पे है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, काम तो बिल्कुल पहले नंबर पे होता है। तो गल दसो, मीह पै रहा गुराया वाल के नहीं पै रहा?
2: गुराया मैडम सवेरे 5 बजे पिया सी।
1: अच्छा जी,
2: पहला तो 10-15 दिन हो गए, एवं कहते होंगे मूंह धोन वाला ही दे गया।

0: अज थोड़ा जहा ज्यादा पै गया कुछ अज
1: अज थोड़ा ज्यादा पै गया। दिल खुश होया
0: हाँ
1: अज
0: जी
1: कि अज भी ऐदा ही तरसदे ही रह गए कि होर पै जांदा ते वधिया हो जांदा।
0: नहीं मैडम वो तो सुते पे ते पै गया पता ही नहीं लगा कदों पिया। सवेरे उठ के देखा तो बारिश काफी हुई थी, गमले वगैरह सारे भरे पए थे। मैं कह मतलब मीह काफी पिया। हाँ
1: मीह तो काफी पिया पर सानू अजकल दर्शन नहीं हो रहे मीह दे, दिक्कत ही ये
0: जी
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ऐसी फोरकास्ट भी की थी मौसम विज्ञानियों ने कि जुलाई के महीने भी जेड़ा है ना वो लू भी चल सकती है।
1: तो वेखन नु
0: बारिश
1: मिल भी
0: का
1: रही है।
0: मानसून बहुत कमजोर रहना उन्होंने पहले ही किया था, इस
1: ते उन्हां दी
0: करके बारिश हो नहीं रही। मतलब बदल तो रोज बन रहे हैं लेकिन धुप भी नाल बहुत तेज निकलती है,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: क्योंकि इन्हों दिनों में तो मतलब बदल होने चाहिए, मौसम च थोड़ी जी सहल होनी चाहिए है, तो वो काम है नहीं, ठंडक नहीं हैगी मौसम च।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बेसिकली जो भी असी बारिश दे मतलब असी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जून जुलाई
0: जी जी
1: जुलाई दे महीने च आके थोड़ी राहत मिल जाएगी गर्मी तो, वो इस वारी
0: बिल्कुल
1: हो नहीं
0: बिल्कुल
1: रहा। बदल कट्ठा तो हुंदा है पर मीह नहीं पै रहा। जे मीह पै भी रहा है तो सवेरे सवेरे पै के हट जाता है तो वो बस असी तरसते ही रह
0: सारा दिन
1: जाने।
0: धुप निकलती है, फिर उस
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: बाद फिर
1: बिल्कुल।
0: वो पैसे का कोई फायदा नहीं होता, जा तो बदल रहन जहां शाम नू पवे तो रात निकल जाती है वधिया। मतलब पूरा दिन धुप ही मतलब जून जुलाई वांगू जून वांगू ही निकल रही है, मई जून वांगू,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: इस करके वो हुमस ही बहुत हो जाती फिर वो करके ज्यादा गर्मी महसूस होती है।
1: ते कदे इदा कीता रविंदर जी कि किस दिन मीह पै रहा होवे ते दुकान ते जान दा जी ना कीता होवे ते घरे बैठे रहो ते घरे बैठे चाह पकौड़े खाए होण,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: कर
0: जदों
1: लैने हो इदा।
0: किवे बिल्कुल कर लईदा जी, जदों बारिश ज्यादा हुंदे होवे ना मतलब हट ना रही होवे 12-1 बजे तक भी ना हटे तो फिर छुट्टी कर लईदी आ, फिर घर जिदा पूड़े आ वो बना ली दी, जब पकौड़े हो गए वो बना ले, कोई ना कोई ऐसी चीज बना ले दी है।
1: अच्छा जी चलो
0: पर
1: बड़ी।
0: हुण तां सौण दा महीना मैडम आउंदा ही नहीं, हुण खीरा पकौड़े खीरा पूड़े वाला काम हुण है नहीं, अगे तां पूरा दिन झड़ी लगदी हुंदी सी ते बार बार खीर खानी कदी पूड़े खा लेने, पूड़े भी कई तरह दे मिठे भी बनाउणे गुड़ वाले भी बनाउंदे हुंदे सीगे, नमकीन भी बनाउंदे हुंदे सी, पकौड़े भी बनाउंदे हुंदे सी गुड़ दे, ते ओह बड़ा मौसम ही नहीं आउंदा ते खाना की किसे ने,
1: सही कह जी,
0: क्योंकि गर्मी च बड़ी चीजा बनाने का कोई फायदा नहीं,
1: फायदा
0: जब
1: है नहीं
0: मौसम
1: गा।
0: ठंडा
1: बिल्कुल
0: हो तो
1: बिल्कुल।
0: ही ये चीजा बनाने वाले नु भी अच्छी लगदी है खाने वाले नु भी अच्छी लगती,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: क्योंकि गर्मी च इदा की चीज जी बनानी है वो तो लेडीज का भी बुरा हाल हो जाता, वो तो कोई फायदा नहीं। हाँ
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: जी
1: रविंद्र जी
0: करके गाना
1: गाना दसो केड़ा सुनोगे।
0: मैडम सावन महीने के इंतजार से जगजीत सिंह का ही सुना दियो, सावन का महीना
1: हाय हाय वाह
0: याद
1: जी
0: आई
1: वाह
0: जाए, सावन का महीना।
1: वाह जी वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी फोन करने के लिए।
0: हाँ शुक्रिया मैडम थोड़ा जी,
1: शुक्रिया जी
0: धन्यवाद।
1: शुक्रिया। धन्यवाद जी धन्यवाद। सो रविंदर जी ने बारिश दे मौसम दीयां गल्लां बातां करके ना सानू होर तरसा दिता मीं दे लई। असीं वैसे ही तरसे पे सीगे पर जिहड़ी उन्होंने गल्लां कीतियां ना कि वो खीर पूड़े ते जो होर स्वाद स्वाद चीज़ां बना के खाँदे ने उहदे लई एक्चुअल साडा मन कला कि यार कदों इंद्र देवता प्रसन्न होणगे ते कदों मीह पौणगे। पर चलो कोई गल नहीं, असीं ना उम्मीद नहीं हैगे फिर की हो गया जे थोड़ी देरी हो रही है। उम्मीद करदे हां कि जदों भी हुण बारिश पएगी ते वधिया तरीके नाल पएगी ते सारिआं दे दिलां नूं खुश करके जाएगी। फिलहाल तुहाडे लई जगजीत सिंह होरां दी आवाज़ विच गाना मैं पेश कर रही हां सौन दा महीना, जो कि फरमाए सी रविंदर जी दी, जो कि गुराया तो ने।

मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।

प्यारे प्यारे गीत किस्से ते कहानी तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम युवाणी एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते मैं हां तुहाडी दोस्त आरजे नेहा ते दोस्तों हर वार दी तरह अज भी मैं लेके आई हां तुहाडे लई कुछ खास गल्लां बातां कुछ इनफॉर्मेटिव गल्लां ते उस तो बाद थोड़ा सैगमेंट वर्ड एक्सप्रेस जिहदे विच मैं लेके आई बहुत ही खास वर्ड ते प्रोग्राम विच साडे नाल जुड़े रहो।

0: दिमाग दी कसरत ते दोस्तों सैगमेंट शुरू हो गया दिमागी दंगल ते सैगमेंट शुरू होने नाल साडे पहले कॉलर भी साडे नाल जुड़ चुके ने ते देखदे आ साडे टंग ट्विस्टर जिहड़े हैगे आ ते रिडल्स हैगे आ उहनां नूं सही तरह गैस कर पाउंदे आ या नहीं। हेलो
1: हेलो मैम जी सतिकार।
0: हां जी बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। कौन जनाब गल कर रहे ने?
1: बहुत स्वागत है बहुत बढ़िया प्रोग्राम से जी पेश करया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: पढ़ रहे हैं जी।
0: थोड़ा नाम की है?
1: हां जी
0: थोड़ा नाम की है?
1: मैम मैं कुलदीप सिंह पिंड लादियां खौर जिला लुधियाने से बोल रहा जी।
0: ते हुन तुसी तैयार हो फिर मेरे टंग ट्विस्टर दे लई?
1: हां जी मैम कोशिश जरूर करांगे जी।
0: ते मैं थानू ना एक टंग ट्विस्टर देन लगी हां ते तुसी ओनु तीन वारी रिपीट करना है।
1: हां जी
0: ठीक है मैं बोलन लगी हां बहुत ध्यान नाल सुनियो। छज ते छज्जा छज्जे ते छज्जी
1: छज्जे ते छज्जा छज्जे ते छज्जी छज्जे ते छज्जा छज्जे ते छज्जी छज्जे ते छज्जा छज्जे ते छज्जी।
0: वाह वाह जी क्या बात है तुसी बहुत वधिया तरीके नाल मतलब एक बार थोड़ा जा अटके पर तुसी फिर भी बहुत वधिया तरीके नाल बोले है ते बहुत बहुत शुक्रिया ताडा।
1: पेज करे ना अपना जी पंजाबियां जी ये शुरू तो आपका भी क्या बनी है कहने पूछना।
0: हां जी
1: हां वधिया करे जी तुसी
0: बहुत बहुत शुक्रिया की ओ साडे पंजाबियां ते दिल बहुत बड़े ने ना ते ओ खातेदार च कोई कमी नहीं छड़दे वैसे।
1: हां जी हां जी बस
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत प्रोग्राम आने बहुत बहुत शुक्रिया। हुण सुनदे हां प्यारा जिहा गीत अगले कॉलर नाल जुड़दे हां बहुत जल्दी। ते दोस्तों जे तुसी भी साडे प्रोग्राम दे नाल विच जुड़ना चाहुंदे हो ते कुछ इदां दे टंग ट्विस्टर्स ते रिडल्स दे जिहड़े जवाब तुहानूं देने पैणगे ते उस तों बाद असीं इंजॉय करांगे गीत ते तुसीं नंबर नोट कर लो 0181 3142174 ते तुसीं मैनूं कॉल कर सकदे हो ते सुनदे हां प्यारा जिहा गीत ते उस तों बाद मिलदे हां गीत तों पार साडे अगले कॉलर दे नाल।

हाँ जी दोस्तों, सैगमेंट तुसीं इंजॉय कर रहे हो दिमागी दंगल दे प्रोग्राम चल रहे युवाणी ते साडे जिहड़े अगले कॉलर ने उह साडे नाल जुड़ चुके ने। आओ करदे उहनां दे नाल गल्लबात, देखदे आ उह साडी बुझारत बुझ सकदे ने। टंग

0: हाँ जी दोस्तों, तुसी ट्यून कीता होया 107.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो युवाणी ते सैगमेंट चल रहा है दिमागी दंगल, जिदे विच असी करवा रहे हां तुहाडे दिमाग दी कसरत। ते दोस्तों मेरे जिन्ने भी हुण तक लिसनर्स ने उन्होंने काफ़ी सही ते इंट्रस्टिंग जवाब दिते ने। एक ने थोड़ा जिहा कुछ एक वर्ड गलत हो गया सीगा, पर कोई गल नहीं, इन्ना तां चलदा है, कदे कदे सुनन च नहीं समझ आती चीज़ां दी। बट साडे नाल जुड़ चुके ने साडे अज दे अगले कॉलर, देखदे हैं किन्ने के इंटेलिजेंट ने। हेलो,
1: सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते दोस्तों युगवाणी प्रोग्राम का नाम?
0: क्या बात है,
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है जी ताड़ा साड़े प्रोग्राम दे विच। कौन गल कर रहे ने, थोड़ा नाम की है?
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट जलंधर, रहिंदा अपने आकाशवाणी दे दिल दे अंदर।
0: ओहो क्या बात है आकाश, मैनूं लगदा तुसीं एफएम दे बहुत वड्डे फैन हो। जवाब देना है, बुझारत कुछ इस तरह है, ओ केड़ी चीज है जिदे दंद तो हुंदे है पर ओ खांदी नहीं है? बहुत इजी जी बुझारत है, थोड़ा जा गेस करो।
1: दंद है
0: जिदे दंद तो है पर खांदी नहीं है,
1: पर खांदी नहीं।
0: चलो कोई गल नहीं, थानू जवाब नहीं पता, इट्स ओके, जवाब थानू मैं दस दिनी हां।
1: अगली बार तैयारी करके आवांगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार तुसी पूरी तैयारी नाल आयो, पर थानू मैं तो जवाब दस दिनी हां दोस्तों।
1: हां जी हां जी,
0: ओ केड़ी चीज है जिदे दंद हुंदे है पर खांदी नहीं है? ओ चीज है कंगी, कंगी दे दंद तो हुंदे है पर खांदी नहीं है।
1: मैंने मैं दसना है जी, तुसी बड़ा मत दस दस नहीं पकड़ा, फोन आ गया की यार तुसी बोल
0: जवाब देने बहुत ही इजी बुझारता ने, ते उस तो बाद तुसी मेरे कुछ टंग ट्विस्टर्स नू रिपीट करना है। गीत तो पार असी फिर मिलते हैं साढ़े अगले कॉलर के नाल।

0: हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम तुसीं इंजॉय करो युवाणी ओनली ऑन 107 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते अपने आर जे नेहा दे नाल। ते दोस्तों उम्मीद करदी हां प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे होवोंगे। ते इस दे नाल ही साडे अगले कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने, करदे हां उहनां दे नाल गल्लबात, देखदे हां ओह साडी बुझारत बुझ सकदे आ या टंग ट्विस्टर नूं रिपीट कर सकदे कि नहीं। हैलो
1: जी, नमस्कार मैम,
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। कौन गल कर रहे ने
1: जी? मैं ओंकार सिंह गल कर रहा हूं जलंधर तो।
0: हां जी ओंकार जी, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो तुसी?
1: जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम तुसी कीता है युवाणी ते। आई थिंक टिंग ट्विस्टर बड़े ही जबरदस्त हैगे ते उहनां दे जवाब भी बड़े जबरदस्त हैगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस फिर तुसी तैयार हो अपने अगले टंग ट्विस्टर दे लई?
1: अच्छा, टंग ट्विस्टर पूछ रहे हो?
0: यस यस, टंग ट्विस्टर।
1: ओके, तो पेश करो।
0: टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके नाल है, टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा। ए तुसी तीन वारी रिपीट करना है।
1: ओके।
0: हां जी,
1: टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा, टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा, टिब्बे उत्ते टिब्बी, टिब्बी उत्ते टिब्बा।
0: वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही तरीके नाल तुसी सारे वर्ड्स बिल्कुल तरीके नाल बोले ने, ते बहुत वधिया लगा ते बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच जुड़न लई। उम्मीद करते हैं तुसी ते साडे सारे लिसनर साडा अज दा प्रोग्राम इंजॉय कीता होएगा। हाँ जी दोस्तों, ते जे तुसी भी जुड़ना चाहते हो साडे नाल साडे प्रोग्राम दे विच, ते तुसी करना कुछ नहीं है, बस तुसी डायल करना है 0181 2341 174 ते बस देने मेरे कुछ टंग ट्विस्टर्स नूं रिपीट करना है ते मेरी कुछ बुझारतां ते जवाब देने हैं। ते बस उस तो बाद इस गीत तो पार मैं फिर मिलांगी थानू अपने अगले कॉलर दे नाल।

प्रोग्राम तो इंजॉय कर रहे हो लव यू जिंदगी अपनी दोस्त होस्ट आर जे रिया दे नाल। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच आपां गलबात वी ही कर रहे हैं कि असी अपनी कैवें जिंदगी नूं सवार सकते हैं, क्योंकि जिंदगी जिहो जी वी होवे उहनूं सवारना जिहड़ा हैगा उह साडे हथ विच ही हुंदा है। ते जिंदगी नूं कैवें सवारना है, सब तो पहले तो मैं कहनी हाँ कि भाई अज सैटरडे हैगा है, कल संडे हैगा है, तो जिहड़े लोग अज इन्हां नूं छुट्टी है, क्योंकि सैकेंड सैटरडे बहुत सारे ऑफिसिज दे विच स्कूल्स दे विच कॉलेजिज दे विच छुट्टी हुंदी है। तुसीं की करदे पए हो है घर रह के? तुसीं गड्डी चक्को या ट्रेन की टिकट्स बुक कराओ, बस दीआं टिकट्स बुक कराओ ते अपनी फैमिली दे नाल घूमन चल जाओ। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत सोहना होया पिया है ते थोड़ी बहुती आउटिंग अपने आप दे लई ते फैमिली दे लई हमेशा जरूरी हुंदी है। इहदे नाल की हुंदा कि तुसीं अपनी फैमिली दे नाल जिहड़ी बॉन्डिंग है होर अच्छी हो जाती है। ते एक चीज़ ना, हुण जदों भी आपां घूमन फिरन दी किते ट्रैवल करन दी गल करदे हां ते एक चीज़ हमेशा साडे दिमाग च आउंदी है कि यार

ऐसे खर्च हो जाएंगे, सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। पर तुझे कभी ये सोचा है कि जिंदगी भी तो एक दिन खत्म हो ही जानी है? सो जिंदगी जिन्नी भी हैगी है वो साढ़े हाथ विच नहीं हुंदा, पर उस जिंदगी नू किवें जीना है वो हमेशा साढ़े हाथ विच हुंदा है। तो जिहड़ा जिंदगी का सफरनामा है ना, इनू किते ना किते तुसी सफर करदे घूमते फिरते कर लो तो जिंदगी खूबसूरत क्यों नहीं बनेगी।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सो अज दे इस प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच आपां सिखिया है कि किवें असी जिंदगी नूं अपनी छोटी छोटी आदतों के नाल सोहनी बना सकते हैं, क्योंकि हालांकि जिहड़े आउटर सरकमस्टैंसिज होंदे ने साडे हाथ विच ना होण, पर जिहड़े इंटरनल सरकमस्टैंसिज होंदे ने साडे जिहड़े मन दा भाव होंदा है, वो साडे हाथ विच हमेशा होंदा है। तो कोशिश यही करनी चाहीदी है कि जिवें इस एक मकान दे विच, मकान तो सानूं मिल जाता है पर उन्हूं फुल बूटिया दे नाल, घर दे जीआं दे नाल, या असीं सोहनी सोहनी खुशबू दे नाल उस मकान नूं किन्ना सोहना घर बना सकते हैं। साडी जिंदगी भी इदां दी ही हुंदी है, सो सानू कोशिश करनी चाहिए कि जिदा की भी जिंदगी सानू मिली है असं उन्होंने गल वक्खरी पा के कहीए लव यू जिंदगी। तो जेकर कोई तुहानू तंग करदा है ना, फिर तुसी ना ए वाला गाना सुनिया करो।

हां जी नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सलाम की हाल चाल ने तुहाडे सारिआं दे अज खास वीकेंड क्योंकि वीकेंड खास इस करके क्योंकि शनिवार दा दिन है ते मैं तुहाडी दोस्त वंदना लैके हाजिर हां अज वीकेंड दी शाम नू सेलिब्रेट करन लई खूब सारा मस्ती भरिया कंटेंट इनफॉर्मेशन गल्लां बातां ते खूबसूरत जे गाने

जी हाँ, अज गलबात करांगे असी, प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं। फिलहाल जी फिल्मी दुनिया अज दे विच गलबात होएगी फिल्म जगत दी एक नहीं दो दो महान हस्तियां दे बारे विच, दो दो पर्सनैलिटीज़ दे बारे विच, उना दी लाइफ स्टोरी, उना दिया वधिया वधिया हिट मूवीज़ ते उना दे बारे विच कुछ इंटरेस्टिंग ते दिलचस्प गल्लां असी इस प्रोग्राम दे विच करांगे। शुरुआत करदे हां जी प्रोग्राम दी एक एदां दी शख्सियत दे नाल जिन्हां ने शुरुआत तां कीती इंडस्ट्री दे विच एदां दी कि किसी ने शायद सोचिया भी नहीं सी। एक धमाकेदार ब्लॉकबस्टर हिट मूवी दे के उन्हां ने कीती शुरुआत अपने फिल्मी करियर दी, ते उस तो बाद दे विच उन्हां दी ये जिहड़ी फिल्मी करियर सी, जिहड़ा ये कहिंदे ना रेल गड्डी सीगी इस करियर दी, एक किद्दां चली, दौड़ी भज्जी ते कित्थे कित्थे हॉल्ट आए। असी गलबात करनी है इन्हां सारियां चीज़ां दी ते नाल नाल उन्हां दी कुछ थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ दे बारे विच भी।

जी हाँ, ते पहला सब तो शुरुआत करांगे असी। आज दिन है जी 11 जुलाई, ते 11 जुलाई नू एक बहुत ही खास दिन है जी, बर्थडे है साढ़े इंडस्ट्री दे विच 80s दे चॉकलेटी बॉय कुमार गौरव जी दा। ते आज असी गलबात करनी है उना दे बारे विच, ते उना दी जड़ा फिल्मी करियर है उदे बारे च कुछ गल्लां बातां करांगे। कुमार गौरव जिन्हां दा असली नाम मनोज तुली है, ते ओ रजिंदर कुमार साहब दे बेटे ने, ते ऑडियंस उन्हां नूं सिर्फ एक स्टार दे तौर ते नहीं बल्कि एक रोमांटिक हीरो दे तौर ते जानदी है। जी हाँ, कुमार गौरव जिन्हां ने जदों अपना मूवीज़ फिल्मी करियर जड़ा है शुरू किया, तो उस टाइम दे विच लंबियां लाइनां लग जांदियां सी। उन्हां दी पहली मूवी जदों रिलीज़ हुई, तो उस पहली मूवी ने इस तरह दियां धमालां पाईयां सारियां जगह दे उत्ते, हर कहिंदे ना नुक्कड़ चौराहे दे उत्ते गल्लां बातां होण लगियां इस नवें चॉकलेटी हीरो दियां। ते नाल नाल जिद्दां ही मूवी रिलीज़ हुई, ए मूवी दा नाम सी लव स्टोरी, ते इस मूवी दे रिलीज़ हुंदिया ही जी इन्हां दे पूरे स्टाइल नू कॉपी कीता जान लगा उस टाइम दे विच। जिद्दां कि जदों कॉलेज दे जिहड़े बच्चे सीगे, जिहड़े स्टूडेंट सी, यंगस्टर सीगे, खास करके लड़के लड़कियां, उन्हां ने फॉलो करना शुरू कर दिता कुमार गौरव जी दा ए जिहड़ा स्टाइल सी।

और ये पहली मूवी सी तो इस करके ये ज़्यादा लोगों नूं ये लग्या कि शायद ये खुद ही सिंगर भी ने और इन्हों का स्टाइल जड़ा सीगा वो बहुत ही ज़्यादा जड़ा ना लोगों नूं पा गया ते पहली मूवी ने ही कुमार गौरव जी नूं सुपर स्टार बना दिता बॉलीवुड दे। जी हाँ गल कर रहे हैं जी लव स्टोरी दी ते फर्स्ट मूवी उन्हां दी ते फिर एदा ही इसे मूवी दा एक खूबसूरत जिहा ट्रैक सुनदे हां क्योंकि ये गाना जड़ा है ना ये गाना तुहानू भी सारयां नू याद आ गया होना है क्योंकि ये गाना असी खास करके उदों सुनदे हां जदों सानू किसे दी बहुत याद आंदी है ते याद करदे करदे तुहानू मैं भी ये गाना प्ले करन जा रही हां तुहाडे लई। इंजॉय करो मेरे नाल प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच।

प्रोग्राम चल रहा है जी फिल्मी दुनिया ते तुसी मेरे नाल यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल आज सुन रहे हो कुमार गौरव जी दी स्टोरी क्योंकि आज है जी उनका बर्थडे उनका स्पेशल डे ते असी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका बर्थडे इत्थे एफएम रेनबो दे उत्ते तुहाडे नाल यानी कि साडे लिसनर्स दे नाल कहिंदे लव स्टोरी तो बाद कुमार गौरव नूं ना अक्सर ज्यादा रोमांटिक हीरो दी तरह ही लोकी देखन लगे ते उन्हां नूं जिन्ने भी रोल्स भी ऑफर होए ना वह सारे उस तरीके दे जिहड़े रोल्स ने वो मिलन लग गए सी पर हर एक्टर चाहुंदा है ना कि लोग उहदी एक्टिव एक्टिंग नूं भी याद रखन उहदी लुक्स दे नाल नाल ते उहदे गाणियां दे उहदे मतलब उहदी मूवीज़ दे म्यूजिक दे नाल नाल एक्टिंग वजों भी पछाणिया जाए कोई भी एक्टर

प्रोग्राम चल रहा है जी फिल्मी दुनिया ते असी गलबात कर रहे हैं अज कुमार गौरव जी दी ते तुहानू पता है कि इस मूवी दे विच तां इन्हां ने बहुत वधिया दोस्ती परफॉर्म की पर इहदे नाल नाल रियल लाइफ दे विच वी ये दोनों जने बहुत अच्छे दोस्त ने बचपन तो बहुत अच्छे दोस्त ने ते इहदे नाल नाल ही जी कुमार गौरव साहब जिहड़े सीगे कहिंदे ना कि कुछ लोग जिहड़े ने कुछ टाइम तो बाद दे विच कैमरा तो थोड़ा जिहा दूर हो जांदे ने थोड़ी जी परसनल लाइफ वल वी ज़्यादा चले जांदे ने क्योंकि हर एक एक्टर की लाइफ जिहड़ी है वह सारी उम्र वास्ते सेम नहीं रहिंदी पर कुमार गौरव साहब ने थोड़ा जिहा जल्दी ही 1990s दे दशक दे विच ही उन्होंने हौली हौली फिल्मां तो दूरी बनानी शुरू कर दी 1990 तो बाद दे विच ते लाइमलाइट तो थोड़ा जिहा पिछे रहना शुरू कर दिता उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपनी परसनल लाइफ ते अपनी बिजनेस दे जिहड़े वेंचर सीगे अपने बिजनेसिस वगैरह उन्हां वल ध्यान देना शुरू कर दिता ते एक ये भी एक दिलचस्प जी गल है कि हमेशा पब्लिसिटी तो दूर रहे उन्होंने बहुत घट इंटरव्यूज़ दित्तियां ते हमेशा एक प्राइवेट जिंदगी नू प्रैफर कीता उन्होंने शायद इसे करके जदों उन्हां दा नाम आंदा है ना तो सब तो पहला याद आती है एक मासूम जी मुस्कान ते थोड़ा जिहा उन्हां दा खास करके पहली मूवी वाला जिहड़ा लुक है जबरदस्त ओ जी हाँ ते दे नाल नाल ही कुमार गौरव जी की परसनल लाइफ ते जड़ी फिल्मी दुनिया की जड़ी जिंदगी है वो वैसे तो नाल ही जुड़ी हुई है क्योंकि उन्हां दा व्याह जड़ा वह रीमा कपूर दे नाल होया सी जो कि राज कपूर जी की बेटी सी बेटी है इस तरह दे नाल हिंदी सिनेमा दे नाल उन्हां दा एक मतलब हिंदी सिनेमा दे बॉलीवुड दे दो बहुत ही वड्डियां फैमिलीज़ दे जड़े बच्चे उन्हां दे उन्हां दी जदों मैरिज हुई तो बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप दे विच आ गए हो तो इस तरह दे नाल ओह काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ ने कपूर फैमिली दे क्योंकि वह ऑलरेडी उन्हां दे बेटी दे नाल मैरिड ने तो इस तरह दे नाल उन्हां दी एक बहुत ही वधिया जी लाइफ जिहड़ी आ उन्हां ने कंटिन्यू की बाद दे विच थोड़ा जिहा लाइमलाइट तो दूर रह के ते भावें वह दूर ने लाइमलाइट तो बट 80s की जो गल करिए उन्हां दी गल कीते बिना 80s दीआं मूवीज़ की गल करनी जिहड़ी है वह मैनूं लगता है कि इनकंप्लीट है क्योंकि एक ही फिल्म दे नाल सुपरस्टार बनना ना बहुत वड्डी गल हुंदी है वह भी उस जमाने दे विच जदों ना सोशल मीडिया सी ना ही किसी तरीके दी बहुत खास प्रमोशनज हुंदियां सी जदों कि सिंपल एक ऑडियंस सी साडी साडे वर्गी मतलब साडे तो पहलां वालियां जिहड़ी जनरेशनस ने उन्हां वर्गी ते मूवीज़ थिएटर्स च आंदियां सीगियां ते कैसेट्स लै के लोग सुनदे सीगे उस जमाने दे विच इन्नियां ब्लॉकबस्टर हिट जिहड़ियां मूवीज़ आंदियां सी ना इह बहुत वड्डी गल है अपने आप दे विच ते कुमार गौरव जी दे बर्थडे दे उते साडे सारयां वल्लों असी एक वारी फिर तो उन्हां नूं मुबारकां दिंदे आ ते इस सैगमेंट दा असी मैं आखरी गाना प्ले करांगी ते उस तों बाद ही चलांगे नैक्सट सैगमेंट वल ते देखांगे कि अज सैकिंड जिहड़ी है वह बॉलीवुड की कीड़ी हस्ती है जिन्हां दे बारे च गल करनी है पर फिलहाल सुनदे आ इस खूबसूरत जे ट्रैक नूं

नमस्ते जी, एक बारी द्वारा तो तुहाडा वेलकम है प्रोग्राम जड़ा की शुरू हो चुकिया है। हुण मेरे नाल तुहाडी दोस्त वंदना दे नाल कुछ इनफॉरमेशन्स, इंपोर्टेंट गल्लां बातां ते नाल नाल सोहणे सोहणे गीतां दे नाल। ते तुसी भी फटाफट तो नोट भी करनिया ने गल्लां, ध्यान दे नाल सुननिया ने मेरियां गल्लां बातां ते नाल नाल इंजॉय करने ने सोहणे सोहणे गीत, क्योंकि जी शनिवार दी है शाम ते सब कुछ है जी थोड़ा जिहा स्लो ते मस्ती भरिया, क्योंकि कल तां है जी संडे। जी हाँ, क्योंकि इतवार दी सवेर ते शनिवार दी शाम, इह ते दुनिया दे विच मैनूं लगदा है कि सब तो ज़्यादा वधिया चीज़ है, ते इस तो ज़्यादा वधिया चीज़ कोई हो नहीं सकती। नाल नाल नेट वाणी दी तां मैं शुरुआत करनी है, पर नाल नाल मैं एक गल होर जरूर कहनी है कि गड्डी चला रहे हो तो आराम नाल चलाओ, बरसातां दा मौसम है, ध्यान

ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी हाँ, तो प्रोग्राम हुण असीं शुरू करदे हाँ जी, एक खूबसूरत जिहा प्रोग्राम जिहड़ा नाम है जी नैट वाणी। नैट वाणी एक इदां दा प्रोग्राम जिहदे विच गलबात हुंदी है अलग अलग तरह की मनोरंजन दे नाल नाल जानकारी दी वी। जी हाँ, क्योंकि जानकारी दा खजाना नैट दी दुनिया, नवीं तकनीक ते नवीं सोच ते मनोरंजन दा तड़का, यही तां है प्रोग्राम नैट वाणी दे नाल नाल इंटरनैट भी, क्योंकि असी इंटरनेट के ट्रेंड्स ही तो लैके आने तोड़े तक लैके आने ताकि तुसी इंजॉय करो इंटरनेट नू चलांदिया चलांदिया, पर नाल नाल इनफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ का जड़ा है ना वो वरतों ते दुरवरतों दोनों तरीके दे नाल हुंदियां ने। इस करके असी किद्दां बचना इन्हां सारियां चीज़ां तो इहदे विच असी इस प्रोग्राम दे विच कवर करांगे। जी हाँ, शुरू करना है जी असी नैटवाणी, तो शुरू करन तो पहला मैं लगता है कि प्रोग्राम की शुरुआत एक वधिया जे गाने दे नाल होनी चाहिए है, तो लाओ इंजॉय करो इस खूबसूरत जे ट्रैक नू जी डी कौर की आवाज़ दे विच पलम सूबेदार।

हां जी, एक वारी फेर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम नेट वाणी दे विच। ते अज तुहाडी दोस्त वंदना तुहाडे नाल शेयर करेगी कुछ कुछ इनफॉरमेशन। ते पहला चलदे हां जी।

चीज भी गूगल ने अपने फीचर दे विच पाई है जिहड़ी की है जेमिनाई। जे तुसीं देखिया होवे साइड दे उत्ते जेमिनाई दा भी एक ऑप्शन दिखेगा, जिहड़े लैपटॉप्स यूज करदे ने उहनां वास्ते जरूर नोट्स बनाने लई या फिर होर भी कुछ इनफॉर्मेशन इकट्ठी करन लई जेमिनाई भी तुसीं डेफिनेटली यूज कर सकदे हो। ते बाकी भी कुछ होर गल्लां बातां दसांगी मैं, बट फिलहाल सुनदे हां एक खूबसूरत जिहा गीत ते आनी हां मैं वापस इस गीत दे उस पार, कुछ होर इनफॉर्मेशन लैके फिलहाल इंजॉय करो इस ट्रैक नूं।

हाँ जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। स्वागत स्वागत स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम नेटवाणी दे विच। गलबात असी कर रहे हैं अलग अलग तरीके दिया इन्फॉर्मेशन के बारे में। मैं कुछ तानू एप्स दसियाँ केड़ियाँ तुहाडे काम दियाँ एप्स ने, कुछ गवर्नमेंट दियाँ, कुछ तुहाडे परसनल यूज वास्ते, ते किदा गूगल दे विच भी मल्टीपल ऑप्शन जड़े ने अवेलेबल ने स्मार्ट ऑप्शन। तो ये नाल नाल ही ना हुण एक चीज़ इदा दी जड़ी कि हर रोज़ मैं न्यूज़ दे विच पढ़दी हाँ, पर मैनू लगता है कि असी फिर भी इग्नोर कर जाने इन्हां चीज़ां नू। उहदा कारण हैगा कि असी हमेशा बहुत ज़्यादा काली दे विच रहने, असी सोचते ही नहीं है कि यार मतलब जे किसी दूसरे दे नाल ये चीज़ हो सकती है तो मेरे नाल भी तो ये चीज़ हो सकती है। तो वह है जी, सब तो पहला अनजान कॉल्स तो है ही है, पर अजक जी बहुत सिरदर्दी बनी हुई है अलग अलग तरह कॉल्स ने, क्योंकि जिदा जिदा टेक्नोलॉजी वध रही है ना उदा उदा ही जड़े साइबर क्राइम करन दे तरीके जड़े ने स्कैमर्स दे वध रहे ने। इसलिए जी अज दा साइबर सेफ्टी कॉर्नर है स्मार्टफोन यूजर लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। जड़ी चीज़ वो ये है कि अजकल ना ऑनलाइन फ्रॉड जड़ा करन वाले तरीके बहुत अलग अलग तरह के अपनाते हैं। जिदा कि कुरियर कंपनी तो कुरियर आता है तो तुहानू पेमेंट करन लई किया जाता है, या फिर बैंक ऑफिसर की तरह जिदा अजकल डिजिटल अरैसट के बहुत सारे केसिस सानू सुनन नू मिलते हैं। इस तों अलावा मोबाइल कंपनियां तो आ गए जी ओटीपी दे दिओ सानू।

हाँ जी, एक बारी फिर तो स्वागत है प्रोग्राम जिस दा नाम है जी नेट वाणी। ते मैं तुहाडी दोस्त वंदना इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल कर रही हां गल्लां बातां ते शेयर कर रही हां कुछ इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन। एंड उम्मीद करदी हां कि ये सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी है ये तुहाडे काम जरूर आएगी। असी बार बार इस तरह दी इनफॉर्मेशन इस करके लैके आने हां क्योंकि असी चाहुंदे हां कि साडे लिसनर्स जिहड़े ने ओह हमेशा अवेयर रहन, बचे रहन इस तरह दे साइबर फ्रॉड्स तों ते सही तरीके दे नाल इंटरनेट नूं यूज करन। अच्छा, असी साइबर फ्रॉड की गल की थी, ते एक चीज़ होर हुंदी है इस तो बाद दे विच कि बहुत इंपॉर्टेंट हुंदे ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जिहड़े कि असी ज़्यादातर ध्यान नहीं रखते। पर अजकल जिन्ने भी फोन आ रहे हैं ना उहदे विच तुसी देखोगे कि एक फीचर है एमरजेंसी कॉल्स का, तो एमरजेंसी कॉल सिर्फ इस करके दिती जाती है, उस फीचर नू यूज़ बहुत घट लोग करते हैं। एमरजेंसी नंबर सारे उस जगह दे उत्ते सानू सेव करके रखने चाहिए ने क्योंकि कभी भी सानू लोड़ पै सकती है एमरजेंसी नंबर्स नू क्लिक करन दी, ते जदों सानू जरूरत पवे तो सानू उस टाइम फोन नू लॉक नू ना खोलना पवे या कुछ भी इदां दा ना करना पवे, असी सीधा उहदे उत्ते क्लिक करके ते एमरजेंसी नंबरस दे उत्ते अपने जो भी जिन्हां दे भी नाम सेव ने असी उहनां नू या अपनी हैल्प नू बुला सकीए इस करके। ते इस करके जी कुछ इदां दे नंबर्स ने जिहड़े हमेशा साडे फोन दे विच सेव रहने चाहिए ने या फिर साडे दिमाग दे विच सेव रहने चाहिए ने। दिमाग दे विच तां कभी खैर नहीं सेव रहिंदे पर क्योंकि इन्हां नंबरां नू बाकी अपने घर दे बच्चियां नू वड्डियां नू भी याद कराना बहुत जरूरी है क्योंकि जी लाइफ दे विच कदी भी जे इन्हां चीज़ां की जरूरत पवे, परमात्मा करे वैसे ना पवे, पर फिर भी ये सानू हमेशा हैंडी रखने चाहिए ने। जिदा कि सब तो पहला नंबर 112 जिहड़ा कि सानू पता है नैशनल एमरजेंसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम जिहड़ा कि पुलिस फायर ब्रिगेड जां एम्बूलेंस दा नंबर है। किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन दे विच असीं 112 ते कॉल करके मदद लै सकदे हां ते इह साडे कोलों सब तो ज़्यादा हैंडी है और सब लोग याद भी रखते हैं और जरूर याद होना चाहिए। अपने बच्चों भी याद कराना चाहिए कि कभी जरूरत पवे तो 112 नंबर जिहड़ा है वह साडे कोल है ते असी उस दे उत्ते प्ले करके ना सॉरी उहनूं डायल करके फटाफट तो अपनी जिहड़ी हैल्प है वह बुला सकते हैं। ते इहदे नाल नाल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जिदा तुसीं हाल फिलहाल बहुत सारिया इस तरह दियां मिस हैपनिंग्स हुई ने अलग अलग जगहों के उत्ते बच्चियां दे नाल छोटियां बच्चियां दे नाल, ते उस टाइम दे उत्ते भी मतलब इस तरह दियां हैल्पलाइनस जिहड़ियां ने जरूर साडे कोल हैल्पलाइन नंबरस होने चाहिए ने। अपने बच्चों नू अवेयर रखो किसी भी अननोन बंदे दे नाल किते नहीं जाना या फिर जे तुसीं बच्चों नू किते भेज रहे हो तो फिर तुहाडे जिहड़े उहनां दे फोनस दे विच जिहड़ियां ने लोकेशनस ऑन रहणियां चाहीदियां ने इस तरीके दे नाल कि असी ट्रैक कर पाइए कि साडे बच्चे कित्थे ने, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल 181 181 विमेन हैल्पलाइन नंबर है जे किसी भी औरत नू हरासमेंट वॉयलेंस या फिर किसी होर एमरजेंसी सिचुएशन दे विच किसी भी तरीके की मदद की लोड़ पैंदी है तो नंबर 181 विमेन हैल्पलाइन नंबर है जिथे तुसी संपर्क कर सकते हो। इस तों अलावा एक होर नंबर 1098 नंबर चाइल्ड हैल्पलाइन नंबर है जे तुहानू कोई भी बच्चा मुश्किल च नज़र आ रहा है, चाइल्ड लेबर विच है, अब्यूज़ किसी तरीके दे नाल उहनू कीता जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है वह बच्चा, तो तुसी तुरंत 1098 मतलब कि इस नंबर दे उत्ते कॉल करके अपनी जिहड़ी कंप्लेंट है वह दस सकते हो तो किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकते हो। ते साइबर क्राइम दा नंबर मैं 1930 दस्या तुहानू साइबर फ्रॉड वास्ते किसी भी तरीके दा जे कुछ इदां दा हुंदा ते तुसी तुरंत इहदे उत्ते कॉल करनी है, फेक इन्वेस्टमेंट UPI स्कैम या बैंकिंग फ्रॉड दे नाल रिलेटेड कुछ भी इदां दी चीज़ हुंदी है तां 1930 ते कॉल करो तुसी ते ये नैशनल साइबर क्राइम

इस वेले रात दे ठीक 9 बज रहे ने ते वेला एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि न्यूजीलैंड विच भारतीय भाईचारा दोवां देशां विचकार मजबूत हो रहे संबंधां दा एक महत्वपूर्ण थम्म है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि लोक राज विच विचारां दा मतभेद होना सुभाविक है, पर संविधान अते लोक भलाई प्रति वचनबद्धता सब तो उपर रहनी चाहिए। देश ने 2 लाख तो वध सूखम खुराक प्रोसैसिंग उद्यमा नूं कर्जे मंजूर करन दा मील पत्थर पार कर लिया है। वियतनाम विच भारतीय सैलानियों नूं लिजा रही एक किश्ती दे पलटन नाल 15 लोकां दी मारे जाण दा खदशा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम विच स्वदेशी तौर ते विकसित स्टेल्थ फ्रीगेट आईएनएस महेंद्रगिरी नूं समुद्री फौज विच शामिल कीता। पंजाब च जनतक ट्रांसपोर्ट सिलसिले च अति आधुनिक कैमरियां ते जीपीएस सिस्टम नाल लैस 696 नवीं बसां शामिल होणगियां। पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध एसआईआर तहत वोटरां दी सहूलत लई सारे वोट केंद्रां ते अज अते भलके विशेष कैंप लाए जा रहे ने। पंजाब विच नशा विरोधी मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध नूं जमीनी पद्धर ते होर मजबूत करदिआं सूबा सरकार ने पिंडां दा हाल एक्शन प्लान लागू करना शुरू कर दिता है। इस दा उद्देश नशियां विरुद्ध लड़ाई विच लोकां नूं होर सरगर्मी नाल शामिल करना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों दौरान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश समेत उत्तरी भारत के हिस्सों च भारी बारिश होने की पेशनगोई की है। भारत महिला कंपाउंड टीम ने आज स्पेन के मैड्रिड विच तीरंदाजी विश्व कप विच चांदी का तमगा जितया है। महिला व्यक्तिगत कंपाउंड मुकाबले विच प्रतिका प्रदीप ने कांसे का तमगा जितया है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਐਫਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।

बताला महाराष्ट्र महाराष्ट्र विचता जी, वाकई इस बार पानी पानी अभी हुआ पड़ा है, क्योंकि सावन जो है वो शुरू तो नहीं हुआ है पर मानसून तो है जी, आ गया है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने ली, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। चलदे हां जी अगले केड़े लिसनर ने उन्होंने की मैसेज भेजा है देखदे हां। इन्ने सारे मैसेज, सब प्रेम नमस्कार हार्दिक अभिनंदन। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा अलका मिड्डा सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने ली तुहाडा। कुछ कुछ गाने जड़े ने मैं शामिल करांगी तुहाडी रिक्वेस्ट दे उत्ते, ते कुछ कुछ जड़े ने ओ नहीं भी हो पाणगे, क्योंकि मेरी मेन जड़ी इंटेंशन रहिंदी है ना जदों मैं आनी आ प्रोग्राम करन लई, कि मैं सारे ही लिसनर्स जड़े ने उन्हां दे नाम इस प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करां। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, देन कालका से सुभाष, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, रिमझिम के गीत सावन गाए। ओहो हो जी, लगता है मानसून का बुखार जड़ा वो चढ़िया होया है सारिया दे उत्ते सिर उत्ते चंगी तरह के नाल। बट ठीक है जी, मानसून शुरू हो गया तो इन्ना तो बनता है। खैर वैसे इस बार बीबिया की बड़ी मौज लगी हुई है, क्योंकि जिदा ही खास करके पंजाब की मैं गल दसाँ तो मतलब साडे एरिए दे विच तां इह होया पिया कि उपर देखदे आ बदल आए है तो चलो जी पकौड़े बनाने हैं, तो मैनू लगता है कि मैडम हाले पकौड़े बनाने लई बेसन लैन जांदियां वा रसोई दे विच, ते इन्नी देर नू बदल जिहड़ा टाटा बाय बाय करके निकल जांदा है जी। यही हाल है अजकल साडे तां इत्थे। वैसे फिलहाल जिन्हां वल जी झमाझम हो रही है बरसात उन्हां वास्ते तां बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मानसून आ चुका है। कार्यक्रम दिल चाहता है फिल्म नाराज़, गीत संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को संभाल, वाह जी वाह बहुत ही वधिया गाना। ग्राम पंचायत बठिना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, अजीत ते अमित, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन ली। देन अगला मैसेज है जी, अगला मैसेज है हाँ जी, फिल्म पेइंग गेस्ट गीत छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीम्पा, कपिल छीम्पा, ईशान छीम्पा, पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैसेज जरूर शामिल करांगे असी। अगला मैसेज आया है जी, नमस्कार वंदना बहन जी, बहन जी के भाई साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार, तिनाल नाल है जी हार्दिक अभिनंदन। मानसून की बारिश रहमतों भरी रही, गीत ये मौसम आया है, किशोर और लता जी की आवाज़ दे विच फिल्म आक्रमण, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, धन्यवाद दिल से, ते वेलकम भी तुहाडा दिल से ही है जी। एक होर मैसेज पढ़ते हैं, राम राम जी। फिल्म जुर्माना गीत सावन के झूले पड़े तुम चले, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी एंड निमित आहूजा। बहुत ही सोहने सोहने जे मैसेजेस, बहुत ही सोहनिया सोहनिया जी रिक्वेस्ट्स। नमस्कार जी, फिल्म जबक गीत तेरी दुनिया से दूर, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्ने सोहने सोहने मैसेज भेजने लई। फिलहाल शुरुआत करते हैं जी एक फेवरेट मेरे गाने तो, क्योंकि भाई मैं आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रही हूँ तो मेरा भी तो बनता है ना एक हक कि अपने फेवरेट गाने को मैं प्ले करूँ। तो लो जी सुनो मेरे फेवरेट गाने नू, ते उस तो बाद विच झड़ी लगाएंगे आपके फेवरेट गानों की।

हां जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। ते मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी होर बहुत सारे जड़े ने ओ तुहाडे वास्ते मैसेजेस तो तुहाडे पढ़ा ही पढ़ा ते नाल गाने भी प्ले करा। अगला मैसेज है जी, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म चोरी चोरी, गीत के बोल आ जा सनम, मधुर चांदनी में हम, फिल्म जाल, ते इस तो बाद दे विच गीत के बोल, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। अच्छा जी, फिल्म चोरी चोरी तो तुसी दो गाने दस्से मैनू, एक अलग मूवी तो एक अलग, इदां तां नहीं चलना जी, एक ही मूवी दा गाना एक बारी प्ले होना है, इदां नहीं चलना। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर, दो लफ्जों की है, वाह जी वाह, दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी। ये गाना इटली में फिल्माया गया है और इस गाने में, अच्छा जी ये तो काफ़ी ज़्यादा उत्ते चला गया भाई। अच्छा, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, फिल्म आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, ओए होए होए का टाइटल सॉन्ग तुन्ना तुन्ना, क्या बात है, किन्ना धमाकेदार गाना तुसी मैनू दस्या। पर मैनू एक गल का जवाब दियो जी, तुसी सारे जने कि इन्ने सारे गाणियां वास्ते तुसी रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो, गाना तो मैं एक ही प्ले करना है, इस करके इन्ने सारे गाणियां दी रिक्वेस्ट भेजन दी तुसी ना मेहनत करो इन्ना सारा लिखन दी, एक गाना लिखो, वधिया जिहा गाना लिखो। आदरणीय उद्घोषक जी, प्यार भरा नमस्कार, फिल्म पारस मणि से स्वर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, बोल वो जब याद आए, बहुत याद आए, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंग्ले, सोपान ताइडे, आशीष मोहरिकर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मैसेज किया है, बहुत ही अच्छा गाना आपने मेरे को बोला है कि भाई मैं प्ले करूं, तो मैं कोशिश बिल्कुल करांगी कि मैं तुहाडे वास्ते ये सोहना जिहा गाना जिहड़ा है वो मैं प्ले जरूर करा। खैर फिलहाल अगले मैसेज वल चलते हैं, असी अगला मैसेज देखते हैं कि किदा है। अगला मैसेज है जी, दिल चाहता है सप्रेम, नमस्कार, आप कैसे हैं जी, हम बहुत बढ़िया हैं, आप भी उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मूवी मृत्युदंड से है, कह दो एक बार सजना, और ठीक है जी, सिंगर्स उदित नारायण, अलका याग्निक जी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी, निशा तुलसी गोस्वामी और दिशा गोस्वामी, और माई रेडियो माई लाइफ, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए। जी आर पॉल ते पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो, फिल्म दो बदन एक गीत, दो बदन दा गीत, अच्छा मैं दो बदन ते एक गीत है, किदा दा गाना होया, रहा गर्दिशों में हरदम, आए हाय हाय हाय, तुसी तां बहुत ही वधिया जे गाने दी फरमाइश की है। फिलहाल अगला मैसेज, सुखबीर सिंह, कमलप्रीत कौर ते रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली जिला संगरूर तो, एनी सोंग, आए हाय एनी सोंग वाले तो मैं बड़े वधिया लगते हैं, जिहड़े कहिंदे ने अपनी मर्जी नाल चला दिओ, बस गाना साडा मैसेज जरूर शामिल कर लियो, नाम साडा आना चाहिए प्रोग्राम दे विच, ये तो मेरे फेवरेट होंगे ने जी लिसनर्स, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन वास्ते, सॉरी कॉल नहीं मैसेज करन वास्ते। प्रोग्राम दिल चाहता है जी की हाल भाजी, भाजी नहीं हाँ जी, मैं भैन जी हाँ, अज मैं लगता हूने हूने तुसी प्रोग्राम जड़ा है वो ट्यून इन किया है FM रेनबो, क्या बात है जी, एक दिन नवदीप कॉल तो सगा तो उस दिन उन्होंने भैन जी

चलो जी मैं क्या थोड़े थोड़े गाने असं प्ले करांगे ते नाल ज्यादा ज्यादा मैसेज पढ़ांगे कि किधरों किधरों दी मैसेज आ रहे ने कितों कितों दी सानू सुन रहे ने लोग इस टाइम। सत श्री अकाल जी, कोई भी सोंग गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, धन्यवाद जी। अच्छा मैं एक चीज समझना चाहनी हां कि तुसी सारे जने सानू कॉल क्यों नहीं करदे? असीं तुहाडे नाल गलबात भी करना चाहते हाँ, तुहानू चाहीदा कि साडे नाल कॉल्स वाले प्रोग्राम्स दे उत्ते भी जरूर आया करो जदों भी तुहानू मौका मिलता है, क्योंकि दिन दे विच बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुंदे ने जिहड़े कॉलिंग वाले हुंदे ने, फोन इन वाले हुंदे ने, उत्ते असीं गल्लां बातां भी करिए, सुनीए, तुहानू थोड़ा जिहा समझिए भी तुहानू, है ना। इस करके कोशिश करिया करो कि तुसीं इस तरह के प्रोग्राम्स दे विच भी शामिल जरूर होया करो। अगे जी, रेडियो की आवाज़ जदों कन्नां विच पैंदी है रूह नूं भी एक नवी ताजगी मिलती है। सुरां दे सहारे किन्ने रिश्ते बनते ने रेडियो दे नाल, सुनने पल भी सजदे ने। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर शराबा, रेडियो दा हर लफ्ज़ लगे दिल दा जवाब। वक्त बदल गया, जमाना भी नवा हो गया, पर रेडियो नाल अज भी ओहो जिहा प्यार। हवा दियां लहरां ते जो प्यार विखेरदा है रेडियो हर

फिल्म अनजाना सॉन्ग रिमझिम के गीत सावन गाए संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पींगा वाला चौंक गुराया जलंधर। पींगा पैंदियां ने उत्थे ते फिर आ जाइए असीं सावन दे विच पींगा लैण वास्ते, दस दियो मैनू प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन लई। नरेश कुमार पॉल पिंड संगवाल जिला जलंधर, फिल्म पत्थर के सनम गीत दे बोल महबूब मेरे, वाह जी वाह, बहुत ही सोहना जिहा जिहड़ा तुसीं मैनू गीत दस्सिया। पर फिलहाल सुनदे आ इक तुहाडी फरमाइश दे उत्ते खूबसूरत जिहा गीत, देखदे आ जी किहदी लॉटरी निकली है, लक्की ड्रॉ निकलिया है, ते इह गाणा जिहड़ा है उसे साडे लिसनर दी फरमाइश ते सी। फिलहाल इंजॉय करो इस गीत नूं।

हाँ जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। ते मैसेज इन्ने सारे आ रहे सी ते मैं कहा चलो मैसेज ज़्यादा पढ़े जान ते गाने जड़े ने ना थोड़े जे घट भी चला लांगे ते तां वी चलेगा क्योंकि साडे लिसनर्स जड़े ने ओ जरूर शामिल होने चाहिए ने प्रोग्राम दे विच। अगला जी मैसेज पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो है। मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका मूवी जुदाई ट्रैक मौसम सुहाने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने ली। ते अगला मैसेज नमस्ते आदरणीय आर जे, रब तुहानू हमेशा खुश रखे। संदीप जलंधर तो पिंड धालीवाल तो सोंग हो नहीं सकता, सोंग तो हो नहीं सकता। हुण तुसी मैनू एक गाना दस रहे हो कि तुसी मैनू दस रहे हो कि सोंग तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्ने सारे तो लोग जड़े ने मैसेज कर रहे ने ते मूवी है जी दिल जले। थैंक यू, बहुत वधिया गाना है, कोशिश करांगी मैं जरूर प्ले करन वास्ते। ते बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन लई, बहुत वधिया लग्या मैसेज पढ़ के। ते हो सकता है जी सोंग हो सकता है। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली खुश नुमा नमस्ते रेनबो। वाह जी वाह गुरमीत जी, तुसी बहुत वधिया मैसेज लिखिया, बहुत वधिया लग्या मैसेज पढ़ के, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज लई। गुड इवनिंग वंदना मैम जी, वेलकम। सोनू रविराज गुलशन लक्की बलदेव नगर जलंधर तो मूवी दिल है तुम्हारा ते कसम खा के कहो ट्रीक। मैनू लगता है कि तुसी ट्रैक लिखना सी ते उस जगह ते ट्रीक लिख दिता है। थैंक यू जी दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करन वास्ते, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी, फिल्म जुर्माना गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ तुसी।

हां जी, एक वारी फिर तो प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच तुहाडा स्वागत है। ते पढ़ रही हां मैं कुछ होर मैसेज जड़े आए हुए ने पिंड चंजेड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार भरी सत श्री अकाल। सानू तुसी फिल्म रुदाली गीत हू हू करे सुना दियो जी। वंदना जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मैसेज करन ली। अगला मैसेज है जी, वंदना मैम नमस्कार जी, खुश रहो स्वस्थ रहो। मैम तुहाड़ी पसंद दा गीत असी सुनना बहुत ही शानदार सी, हुन तुसी साड़ी पसंद दा गीत सुन लो। फिल्म DDLJ गीत के बोल हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम। अनीता एकता गुड्डू परीक्षित रिहान विकास कश्यप और बॉबी राजपूत कस्तूरबा नगर जलंधर कैंट तो FM रेनबो दिल से दिल तक। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ा सोहना जहा मैसेज, बड़ी सोहनी जी फरमाइश, कोशिश करांगी मैं जरूर पूरी करा। अगला जी मैसेज है, वंदना जी आपका प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी बहुत आपकी खूबसूरत पेशकश का हम लाइव आनंद ले रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगे तुसी लिखिया है जी, हमारे यहाँ बहुत भयंकर गर्मी और उमस से बेहाल हैं, बारिश कल हुई थी लेकिन बारिश की कोई खास असर नहीं हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सच्ची सच्ची गर्मी बहुत ज़्यादा। मैं तुहानू कहा पकौड़े इस बार सारे जड़े ने ना पाइपलाइन ची पए ने, हजे पकौड़िया की वारी नहीं आती पी। सदूल शहर राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ चंद्रकला रिवाड़। और अगला जी कोई भी उन्होंने कहा कि सारे गीत जड़े ने बहुत लाजवाब ने, मुझे आपका पेश करने का अंदाज़ बहुत लाजवाब लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, हम घर पर भोजन कर रहे हैं और आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। वाह जी वाह, भोजन करिए और साथ साथ में प्रोग्राम का आनंद इसी तरह से लेते रहिए। एनी सॉन्ग ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर, ऊपर कोट मोहल्ला, मोहल्ला कोट ऊपर है जी, ठीक है। मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, वाह जी वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने ली। अगला मैसेज जी, नाल नाल मैं टाइम भी देखी जावा कि मैं मैसेज ही ना पढ़ती रह जावा है। ते फिल्म लोफर तो ग्राम पंजौनिया जिला जलौन से ये जी मैसेज तुसी मैनू किन्नी वारी भेजे है, सेम ही गांव पंजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, मतलब तुम सवेर तो एक ही गाने की फरमाइश करी जा रहे हो, क्या बात है जी, बहुत वधिया लग रहा है जी कि तुहानू इन्ना ज़्यादा पसंद है गाना है। तो उस तो अगला मैसेज फिल्म

हाँ जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। ते मैसेज एक आया है जी, अमनदीप जी का मैसेज है, सिमरजीत कौर का। तो वह कह रहे हैं कि तेरिया मुहब्बत ने मार सुटिया मूवी तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तो

उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं, उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में इंसान बदल जाता है। सोचते हैं तुम्हें इतना याद ना करूं, लेकिन आंख बंद करते ही इरादे बदल जाते हैं।

रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक। कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए।

कभी तुम पास बैठूं तो ज़माना भूल जाऊं मैं, कभी तुम पास बैठो तो ज़माना भूल जाऊं मैं, तेरी आंखों में खोकर हर फसाना भूल जाऊं मैं, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तेरी बातों की खुशबू से महक उठती हैं ये सांसें, तू छू ले प्यार से मुझको तो गम सारा भूल जाऊं मैं, तो छू ले प्यार से मुझको तो गम सारा भूल जाऊं मैं।

क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है। क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है। प्यार की जिद ना करो, प्यार बहुत महंगा है। चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है, चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है। आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है, आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है।

अगर कोई पूछे कौन हूँ मैं तुम्हारी, अगर कोई पूछे कौन हूँ मैं तुम्हारी, तुम कह देना कोई रिश्ता नहीं, बस एक सुकून हूँ जो कभी पूरा नहीं मिला, एक दर्द हूँ जो किसी और से कहा नहीं, एक याद हूँ जो वक्त से भी पुरानी है, और एक अधूरी सी मोहब्बत जो आज भी तुम्हारी है, एक अधूरी सी मोहब्बत जो आज भी तुम्हारी है।

चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।